सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संबत 1948 की ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 7 तारीख। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए।

0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, सुनते हैं परंपरागत कृषि पद्धति का त्याग कर, वाचन है अनीता तिर्की का।
1: हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति ही परंपरागत कृषि पद्धति कहलाती है। रासायनिक कृषि के पूर्व कृषि पद्धति मूल रूप से फसलों के परंपरागत प्रभेद, पोषक तत्वों के कार्बनिक स्रोत और क्षैतिज विसार पर आधारित था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रासायनिक कृषि उत्पादनों का समावेश हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। रासायनिक कृषि के पूर्व परंपरागत देशज प्रभेद का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उत्पादन क्षमता कम थी। पोषक तत्वों के रूप में कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता था, जिससे वांछित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। कृषि में परंपरागत कृषि औजारों का प्रयोग होता था, जिसकी कार्यक्षमता कम होती थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत का क्षैतिज विस्तार किया जाता था, जिसके अंतर्गत नए जमीन को खेती के अंतर्गत लाया जाता था। आज की परिस्थिति के अनुसार यदि हम इसकी विवेचना करें तो हम पाएंगे कि खेती के लिए जमीन घट रहा है, मजदूरों की समस्या बढ़ रही है, जमीन की उपजाऊपन जो है वो कम होती जा रही है, जबकि बढ़ती जनसंख्या का भोजन उपलब्ध कराने की जो चुनौती है वो बरकरार है। हरित क्रांति मूल रूप से अधिक उपजशील प्रभेद, कृषि रासायनिक और सिंचाई पर आधारित था, जिसके कारण इसका लाभ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिल पाया। अल्पकाल में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। उत्पादनों की उत्पादकता घटने लगी, मिट्टी खराब होने लगा, मिट्टी में मौजूद लाभकारी जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों की संख्या घटने लगी, जिससे खेती की जो आमदनी है वो भी घटने लगी। आज की हमारी प्रमुख चुनौती है जोत का घटता रकबा। उत्पादनों की कार्यक्षमता, पानी की समस्या, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन आदि। आज के संदर्भ में हमें इन समस्याओं का निराकरण करते हुए सदाबहार टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना होगा। हमें खेती की ऐसी पद्धति अपनानी होगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता बरकरार रहे, अतएव कृषि तकनीकों की सामान्य अनुशंसा जो सभी क्षेत्रों के लिए लागू हो संभव नहीं है। हमें क्षेत्र विशेष की विशिष्ट और सीमाओं का ध्यान में रखकर कृषि तकनीक अपनानी होगी। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले तकनीक जैसे उपयुक्त प्रभेद, मिट्टी का स्वास्थ्य प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी तथा शस्य प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। सामान्य रूप से किसान भाई परंपरागत देशज प्रभेद और शोध संस्थानों द्वारा विकसित अधिक उपजशील प्रभेद और संकर प्रभेदों का ही प्रयोग करते हैं। परंपरागत प्रभेद की विशेषता है कि इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु उपज कम लेकिन स्थिर होता है। अधिक उपजशील और संकर प्रभेदों में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उपज अधिक होता है। उपज क्षमता मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मिट्टी में पोषक तत्वों के साथ साथ असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं। मिट्टी में जल की उपलब्धता,

0: मिट्टी की संरचना पर निर्भर करती है। मिट्टी के स्वास्थ्य से परोक्ष रूप से हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, अतएव नियमित रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। टिकाऊ खेती के लिए मिट्टी स्वास्थ्य की जानकारी महत्वपूर्ण है। समुचित जानकारी के अभाव में किसान भाई उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि वांछित उपज भी प्राप्त नहीं हो पाता है।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे परंपरागत कृषि पद्धति का त्याग करें। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

0: आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। ऐसे थके हारे इंसान को प्रतिबोध देते हुए जाने माने विद्वान खलील जिब्रान लिखते हैं कि मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच अंधकारमय है। यदि आकांक्षा ना हो, सारी आकांक्षाएं अंधी हैं। यदि ज्ञान ना हो, सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि कर्म का ज्ञान ना हो, जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बनते हैं, एक दूसरे से बनते हैं और फिर भगवान से बनते हैं। यहां प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती। जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाएं, तभी हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है, निर्णय क्षमता है, आशावादी दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच और उत्साही मन है। अगर आप दुख में से सुख खोज लेना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा। जो स्थिति आपके दिमाग की है वही आपकी खोज की है, यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वो पा लेंगे। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें, जड़ तक कैसे पहुंचें। बिना जड़ के सिर्फ फूल पत्तों का क्या मूल्य। पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं, मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है, जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फल पत्तों से लहलहा उठता है। अंधेरा तभी तक डरावना है जब तक हाथ दिए की बाती तक ना पहुंचे। अपने आप को अपना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो। वैसा जीवन जिसकी परीक्षाएं ना ली गई हो जीने योग्य नहीं है। इसलिए जिए, विश्वास करें प्रभु पर और प्रभु की सत्ता पर।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना है प्रदीप की।

वतन की मिट्टी का कर्ज हम दिल से चुकाएंगे, शहीदों की अमर गाथा हर पीढ़ी को सुनाएंगे, जो हंसकर देश पर मिट गए उन्हें शत शत प्रणाम, तिरंगे की शान में हम जीवन भर गीत गाएंगे। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ देशभक्ति गीत, शब्द रचना थी प्रदीप की। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत। सबसे पहले असित देसाई का गाया हुआ यह भजन, पीर पराई जान सके वही सच्चा इंसान है, सेवा करुणा प्रेम जहां वही प्रभु का धाम है। वैष्णव जन की पहचान न धन से न सम्मान से, जो दुखियों के संग खड़ा हो वही ईश्वर के समान है। आइए

न धन दौलत, न राजपाट, न जग की चतुराई, प्रेम के आगे फीकी पड़ जाए हर प्रभुताई। मीरा, शबरी, सुदामा ने जग को यही बताई, भगवान को सबसे प्यारी होती प्रेम सगाई। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा का गाया यह भजन।

जानकीनाथ की कृपा हो तो हर संकट टल जाता है। भटकी हुई जीवन नैया को सच्चा किनारा मिल जाता है। जिस पर राम का हाथ रहे उसे किस बात की चिंता है। अंधियारा चाहे कितना हो प्रकाश स्वयं खिल जाता है। आइए सुनते हैं असित देसाई का गाया हुआ ये भजन।

जहां संतों का संग मिल जाए वहां मन निर्मल हो जाए, क्रोध लोभ और मोह का हर बंधन पल में खो जाए। संत परम हितकारी हैं, मानवता के रखवाले, उनके चरणों की धूल से जीवन सफल हो जाए। आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर का गाया हुआ ये भजन।

गीतों का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, डर और घबराहट। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। समय याद रखें 7:05 पर। सुबह सुरीली हर दिन की तरह आप सुनेंगे 7:15 पर। खुला आकाश कार्यक्रम का वक्त होगा 7:45 पर। आप सुनेंगे रुचि पांडे की स्वरचित कविताएं। समाचार प्रभात 8:00 से 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर।

संवेद गान शिक्षा आप सुनेंगे 8:45 पर, जो कि कन्नड़ भाषा पर केंद्रित होगा। गीतकार होंगे केसी पाणिग्रही। रसरंजन 9:05 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। आप सुनेंगे सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना 4 ताल में निबद्ध होगी। पखावज पर संगत करेंगे रामवचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

बाल सभा 10 बजे से। सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और मधु चौबे। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। जोहार रांची आप सुनेंगे 10:30 पर, आपकी पसंद 11:30 पर। 12 बजे से आप सुनेंगे महिलाओं के विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भेंट वार्ता आप सुनेंगे स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। भारत भारती आप सुनेंगे 12:30 पर। कलाकार होंगे संगीता स्नेह और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां 12:45 पर।

अनुरंजनी 1:20 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:45 पर। जय भारती 2:30 पर। फिल्म संगीत 3 बजे से। रांची मेलोडीज आप सुनेंगे 3:25 पर।

0: युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा।

0: भारतेना षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चंडीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथम दिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षो में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान

0: दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। सुनते हैं भेंट वार्ता डर और घबराहट। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, भेंट करता संजीव कुमार लाल।
2: आजकल के जीवन में हमें डर बहुत सताता है और जब हम डर जाते हैं तो मन में घबराहट भी होने लगती है और ये डर और घबराहट कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जब हमारे साथी एग्जाम देने जाते हैं तो उसका डर, इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो फिर वहाँ डर सताता है, मंजिल प्राप्त करने की ललक वहाँ भी हमें डर सताता है कि हमें मंजिल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा और इसके घबराहट के शिकार हो जाते हैं। मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगता है, फिर हम घबराहट के शिकार हो जाते हैं। आखिर ये डर और घबराहट हमें क्यों होता है, कारण क्या है और इस डर और घबराहट से हम कैसे ऊपर उठें, तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलें और कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली को हम अपनाएं। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सह प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: नमस्ते सर।
2: डॉक्टर साहब, डर और घबराहट ये क्या है?
3: सबसे पहले हमें समझना होगा कि डर होता क्या है और घबराहट क्या होती है। डर एक प्रकार का साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो किसी भी इमिनेंट डेंजर, मतलब जो डेंजर हमें दिख रहा है, जो परसीव हम कर रहे हैं कि ये डेंजरस है हमारे लिए, उसके प्रति जो सोच, जो प्रथम सोच आती है उसे हम लोग फियर कह सकते हैं या डर कह सकते हैं। और वो अगर परसिस्ट करती है रेगुलरली तो उसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो घबराहट या एंग्जाइटी का रूप ले सकती है। उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में एंग्जाइटी कहते हैं। तो अगर एक बार किसी को डर हुआ तो उस समय भी कुछ लक्षण आएंगे बट वो चले जाते हैं फिर, लेकिन वही चीज़ अगर रिपीटेडली हमारे माइंड में रहती है तो वो डर एक घबराहट का रूप ले लेती है जिसे हम लोग एंग्जाइटी कहते हैं। तो डर और घबराहट का आपस में संबंध है। डर सोच के लेवल पर होती है इनिशियली, जो आगे जाके एंग्जाइटी के रूप में प्रेजेंट करती है और वो फिर विभिन्न शारीरिक लक्षणों के साथ भी प्रेजेंट करती है। तो एंग्जाइटी या घबराहट एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके अंदर एक डर एक भाग कह सकते हैं हम
2: जी।
3: एक चीज़ और जानना जरूरी है कि डर क्यों होता है। तो जनरली दो तीन प्रकार के फियर्स होते हैं। एक होता है कि इवोल्यूशनरी, जो बायोलॉजिकल कॉज है कि वो वैसा इवोल्यूशन में हमें मिला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई सांप देखता है तो डर जाता है, वो डरना चाहिए, अच्छा है हमारे लिए। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशंस हमेशा रहते हैं और उसको लेके उसके प्रति अगर हम लोग नकारात्मक सोचें तो फिर ये एंग्जाइटी या घबराहट का रूप ले सकती है। जैसा कि एग्जांपल है एग्ज़ाम का, अब एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं और उसमें हमें डर है कि हो पाएगा कि नहीं, हमें एक फियर है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पहली बार दे रहा है तब भी ये फियर रहता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन है कि इस एग्ज़ाम में लोग फेल भी करते हैं। तो हम लोग वो जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसका, उसकी ओर लोग जो ध्यान देते हैं उसके कारण ये लक्षण आते हैं उनमें। और थर्ड हो एनवायरमेंटल, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो सबके साथ होती है लेकिन कुछ लोग उसके प्रति इतने चिंतित हो जाते हैं, उसका उसके प्रति इतने सोचने लगते हैं कि उनको वो उस पर उन पर हावी हो जाता है घबराहट या डर के रूप में। तो उसके कारण उनकी जो पर्सनालिटी, उनका फंक्शनिंग, ये सब भी हैम्पर होता है। लोगों को अच्छे बुरे एक्सपीरियंस सबको होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये फिर घबराहट या डर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। वैसे लोगों को हम लोग जैसे पर्सनालिटी में अगर कहें तो न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। जो भी एक घटना होती है उनके साथ, उनके जो निगेटिव एस्पेक्ट है उन्हीं को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके कारण वो उस चीज़ को बहुत ही, उसको हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइज कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसा उनके साथ पास्ट में हुआ है, लेकिन बाद में नहीं भी हुआ है उस तरह की चीज़ें, फिर भी जब भी अगली बार वैसा सिचुएशन आएगा तो उनके बार मन में वो सोच आएगी कि इस तरह का एक बार हुआ था मेरे पास, अगली बार कहीं ऐसा ना हो जाए, उसको लेके फिर उनके मन में फिर भय और फिर घबराहट ये होने लगती है।
2: किन्हीं किन्हीं लोगों को जब हवाई जहाज का सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो फिर उन्हें डर लगता है कि कहीं हमें दुर्घटना ना हो जाए, और इस डर के कारण बहुत सारी चिंताएं उन्हें सताने लग जाती हैं और फिर अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों से हम बाहर निकले? हमेशा डर सताया रहता है कि जो हमने पाया है वो हम खो तो नहीं देंगे, अपनों को खोने का डर, दोस्तों से बिछड़ने का डर, इन सब चीज़ें मिलाकर, इन सब चीज़ों के साथ जो घबराहट उत्पन्न होती है वो हमें परेशान करता है। तो कैसे बाहर निकला जाए, मन को कैसे समझाया जाए?
3: जैसा कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं हर डर या घबराहट के पीछे ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग किस तरह प्रोसेस करते हैं ये रिजल्ट करता है कि डर होगा या नहीं होगा। तो इसका अगर आपको जैसे किसी को भी इस प्रकार का असुविधा होता है तो उस समय उन्हें मन में ये उसके प्रति तार्किक एक सोच रखनी चाहिए कि ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से अगर मन में हम विवेचना करें उस चीज़ की तो हमें कहीं ना कहीं वो लॉजिक मिलेगा कि नहीं, ये सबके साथ नहीं होता है, ये कॉमन है, मेरे साथ हुआ है, दूसरे के साथ नहीं हुआ है, तो दूसरे के साथ भी हुआ था लेकिन उसको तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें सोच के एक उसका एनालाइज करने पे हमें एक सही सॉल्यूशन मिल सकता है। उस पर भी अगर नहीं है तो आप किसी से बातचीत करें, आप अपने जो आपके क्लोज हैं उनसे आप बताएं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत बार प्रथम बार में जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, अगर वो किसी से बात कर लें, वो उनसे बात कर लें, वो उनको अगर अच्छे से समझा दें या उनको एग्जांपल से दे दें तो ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है। इनिशियली अगर हम लोग इस पर काम कर लें तो वो ख़त्म हो सकती है, और अगर ये बहुत बढ़ गई, जैसा मैंने बताया न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटीज़ होते हैं, अगर उनमें इस तरह की चीज़ें हैं तो उन्हें मेरे ख्याल से मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से एक सलाह लेनी चाहिए। ये पूरी तरह ट्रीटेबल है, इसका इलाज बहुत ही आराम से होता है और आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी बहुत आराम से जी सकता है।
2: आजकल की जीवन शैली को यदि देखा जाए, बदलती जीवन शैली है, भागम भाग की ज़िंदगी है और हम एकाकीपन का शिकार हो जा रहे हैं, अकेले हम रहते हैं, और जैसा लोग सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार से निकलकर हम एकल परिवार में आ गए हैं और कभी कभी तो हमें अकेले भी जीवन गुजारनी पड़ती है, तो एकाकीपन कहीं ना कहीं डर और घबराहट मन में पैदा करता है।
3: हाँ, ये कर सकता है अगर आप उससे फाइट ना करें तो, आप उसको अपने पे हावी होने दें तब। अगर हम लोग एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली सभी पता है कि क्या करना रहता है उसमें, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बस उसमें एक्सरसाइज का इंक्लूजन करें, सही खान पान, ये सारे लोगों को पता है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा एक कह सकते टूल है जो इस हमारे मस्तिष्क को, हमारी सोच को मजबूत बनाता है और इससे हमें निजात भी दिला सकता है या इन चीज़ों को हमारे ब्रेन पे हावी नहीं होने दे सकता है। तो एक स्वस्थ जीवन शैली, अपनी बातें दूसरों से शेयर करना, अगर हम अकेले रह रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा फ्रेंड होगा जिससे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, आप फ़ोन पे उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, चर्चा करने से बहुत सारी चीज़ों का हल निकलता है और एक मन हल्का भी होता है, उसे हम लोग कथारसिस कहते हैं। तो अगर वो बात करने से भी आपको ये चीज़ें उस समय बहुत हैम्पर नहीं करेगी और धीरे धीरे धीरे ये चीज़ें चली जाती है।
2: यदि मन की बात बाहर निकालेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा, और यदि हम मन की बात को अंदर ही छुपाए रखेंगे तो हम कुंठा का शिकार हो जाएंगे और फिर वही घूम फिर कर बात, हमें डर लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है, और डॉक्टर साहब कुछ कुछ लोगों को बैठे बैठे भी घबराहट होने लगती है, हालांकि उनके पास सब कुछ होता है, एक मनोनुकूल पूरी चीज़ें हैं उनके पास, घर परिवार जो चाहते हैं उन्हें वो मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो घबराहट के शिकार हो जा रहे हैं।
3: इसे हम लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं फियर ऑफ अननोन, लेकिन टेक्निकली ये अननोन नहीं है। अगर वैसे मरीज हमारे पास आते हैं तो जब उनका हम लोग डिटेल एनालिसिस करते, पूछताछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि कुछ ना कुछ एक घटना थी जिनसे उनको ये चीज़ें प्रभावित कर रही है। उनके कॉन्शियस माइंड में वो नहीं है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग पहचान के फिर उनका अप्रोप्रिएट उनका थेरेपी करते हैं और ये चीज़ें फिर ठीक हो जाती है।
2: तो डर और घबराहट से हम बाहर निकल सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, खासकर ऐसे वर्गों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, कुछ उन्होंने गोल तय किया है उसको प्राप्त करना चाहते हैं?
3: दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहला कि सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाना, यही एक ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत है।

0: बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। और दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, रिलैक्स अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितना हो सके अपना रिलैक्स करने का कोशिश करें। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सब बहुत कॉमन अवेलेबल हैं नेट पे भी, तो उनका रेगुलर फॉलो करें, उनको रेगुलर प्रयास करें उनका, तो ये इन चीज़ों से आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं और इन ये जो बाधाएँ आ रही हैं डर और घबराहट के कारण, उसको ओवरपावर कर सकते हैं।
1: तो लोगों से मिलते रहिए, बातें करते रहिए, नए नए दोस्त बनाइए, अड़ोस पड़ोस से भी मित्रता बढ़ाइए, फिर देखिए आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी खुशनुमा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सब प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, बड़ी अच्छी आज आपने बातचीत की। यदि मन में डर हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डर को बाहर निकालिए, घबराहट नहीं होगा, मंजिल स्वतः ही आपके पास चल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, और आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। फिर एक नई जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे, नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, डर और घबराहट। भेंट वार्ता कार्ड थे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुबह सुरीली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म चिराग का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत मदन मोहन का।

चंबल की कसम, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है हयांग का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: और आइए सुनते हैं फिल्म असली नकली का गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है शंकर जयकिशन का।

कभी कभी, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार के स्वर में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है खयाम का।

और अब सुनते हैं नया दौड़ फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत है ओपी नैयर का।

सुबह सुरीली में आज बस इतना ही। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं खुला आकाश। सुनते हैं रुचि पांडेय की स्वरचित कविताएं।

तकनीक की दुनिया में ज्ञान का दीप जलाती हूँ और शब्दों के सरगम से भावनाओं को कविता बनाती हूँ। नमस्कार, मैं रुचि पांडे, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एवं पिछले 8 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। कंप्यूटर की दुनिया ने मुझे तर्क करना सिखाया और साहित्य ने भावनाओं को शब्द देना। शायद इसी कारण कीबोर्ड की खटखटाहट के बीच भी मेरे मन में कविताओं की मधुर धुन निरंतर गूंजती रहती है। मेरे लिए शिक्षा और साहित्य दो अलग राहें नहीं बल्कि एक ही जीवन यात्रा के दो सुंदर आयाम हैं, जहां एक बुद्धि को प्रकाशित करता है और दूसरा हृदय को स्पंदित। मेरी पहली कविता है जीत लाना। मैंने यह कविता उन साहसी बेटियों को समर्पित किया है जो अपने सपनों को आंखों में सजाए, भारत का तिरंगा हृदय में लिए, लंदन की धरती पर विश्व कप जीतने के संकल्प के साथ रवाना हुई हैं। यह कविता केवल जीत का संदेश नहीं बल्कि उस हौसले, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की आवाज है जो हर भारतीय बेटी के भीतर एक योद्धा बनकर धड़कती है। जीत लाना। आज जीती है तुमने छोटी सी दुनिया, आज जीती है तुमने छोटी सी दुनिया, कल सारा संसार जीत लाना। जीत लाना सात समंदर, धरती आकाश जीत लाना। अपनी उंगली कनिष्का से, अपनी उंगली कनिष्का से तुम भी गोवर्धन उठाना। राहों में चुनौतियां होंगी, तुम बेशक ना घबराना। जीत लाना सात समंदर, धरती आकाश जीत लाना। चीर कर अंधेरे सारे, सफलता का द्वीप जलाना। चीर कर अंधेरे सारे, सफलता का द्वीप जलाना। हो ख्वाब कोई जो तुमने देखे, उस ख्वाब का हर साज सजाना। जीत लाना सात समंदर, धरती आकाश जीत लाना। रोशन करना देश का नाम, रोशन करना देश का नाम, सच्चे भारतीय कहलाना। कृष्ण तुम्हारे सारथी होंगे, तुम भी अर्जुन बन जाना। जीत लाना सात समंदर, धरती आकाश जीत लाना। मैं अपनी अगली कविता वर्तमान विश्व प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस अशांत संसार की उस पीड़ा को स्वर देती है जहां युद्ध की आग में इंसानियत कहीं धुंधली पड़ती जा रही है। यह कविता उन टूटते सपनों, बिखरते रिश्तों और शांति की मौन पुकार का प्रतिबिंब है जो आज पूरा विश्व अपने भीतर महसूस कर रहा है। इस दर्दनाक शोर में, आश्चर्यजनक दौर में कुछ मौतें तड़पती हैं इस युद्ध के माहौल में। धरती माँ भी कांप रही, धरती माँ भी कांप रही, रो रही, पुकार रही, अपने ही बच्चों को हालात समझा रही।

और क्या समझा रही वो सुनिएगा कि बस करो बहुत हुआ, बस करो बहुत हुआ, ये युद्ध रत रत हुआ, इंसानियत ही खो गई, ये कैसा अनर्थ हुआ। कुछ चीखें अनसुनी रही, कुछ चीखें अनसुनी रही, अल्फाज अनकहे रहे, कतरा कतरा सब गया, कितने रक्तधार बहे। यूं तो आग हर तरफ, यूं तो आग हर तरफ, जर्रा जर्रा जल रहा, थामने की कोशिशों में पत्थर पिघल रहा। और धरती माँ क्या चाहती है उस पर मेरी अगली पंक्तियां हैं कि अहंकार का नाश हो, अहंकार का नाश हो, घड़ा पाप का साफ हो, कलयुग का अंत और सतयुग का वास हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण।

साहस और पहचान को बचाए रखने में है अस्तित्व। वो करेंगे लाख बातें तुम्हारे पीछे, वो करेंगे लाख बातें तुम्हारे पीछे, तुम अपनी गरिमा बनाए रखना, सुनकर भी ख्यालात उनके, खुद में स्थिरता समाए रखना। वो चाहेंगे बिखेरना तुम्हें, वो चाहेंगे बिखेरना तुम्हें, तुम खुद को सजाए रखना, और धैर्य की होगी परीक्षा तुम्हारी, तुम अटलता बनाए रखना। अपने भी होंगे जब खिलाफ, अपने भी होंगे जब खिलाफ, तुम हिम्मत जुटाए रखना, और वो चाहेंगे तुम्हारी चुप्पी को तोड़ना, खुद में शांति बनाए रखना। रुलाना भी चाहेंगे वो तुम्हें, रुलाना भी चाहेंगे वो तुम्हें, तुम खुद को हंसाए रखना, वो चाहेंगे तुम्हारा वजूद मिटाना, अपना अस्तित्व बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना। दोस्तों, मेरी अगली कविता मैंने माता पिता को समर्पित की है, जिनके प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर राह प्रकाशित होती है। माँ, जहाँ ममता की नर्म छाँव बनकर हर दर्द को अपने आंचल में समेट लेती है, वहीं पिता अपने कठिन परिस्थितियों को मुस्कान में छुपाकर बच्चों के सपनों को ऊंचाइयां देना सिखाते हैं। माँ अगर ममता है, माँ अगर ममता है तो पिता संघर्ष है, माँ अगर निवाला है तो पिता संसार का हर्ष है, माँ अगर चोट पे आँखों का नीर है, माँ अगर चोट पे आँखों का नीर है तो पिता अपने बच्चों की आँखों में सबसे बड़ा वीर है। जो माँ के आंचल में सुकून की तराई है, जो माँ के आंचल में सुकून की तराई है, तो पिता के साये में बच्चे ने महफूजियत पाई है। माँ, माँ अगर सहनशीलता की मिसाल है, माँ अगर सहनशीलता की मिसाल है, तो पिता का अस्तित्व हर सोच से विशाल है। माँ अगर सपनों की उड़ान है, तो पिता हौसलों की पहचान है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात है कि दोनों ही अपने बच्चों की जान है, दोनों ही अपने बच्चों की जान है। मेरी अगली कविता तकनीक का नया सवेरा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का युग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जहां मशीनें मानव जीवन की सहयात्री बन चुकी हैं। इस आधुनिक परिवर्तन को समर्पित मेरी यह कविता तकनीक का नया सवेरा यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक ने हमारे जीवन को सरल, तेज और अधिक सशक्त बनाया है, और कैसे इंसानी सोच ने अपनी कल्पनाओं को एक नई डिजिटल उड़ान दी है। परंपरा और वेदों का ज्ञान, परंपरा और वेदों का ज्ञान, नेटवर्क की शक्ति एआई ने पाई है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, अब तो सोचने की क्षमता भी आई है। जाने कितने जान बचाए। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, हॉस्पिटल में एआई का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और एयरपोर्ट पे भी हम एआई का प्रयोग करते हैं, रेलवे स्टेशंस पे करते हैं। तो इस पे ये पंक्तियाँ मैंने लिखी कि जाने कितने जान बचाए, ऑपरेशन सिंदूर में भी काम आया है, चांद पर पहुंच गया चंद्रयान से, फिर खुद पर ही इतराया है। धरती माँ की माटी को, धरती माँ की माटी को अंतरिक्ष में उड़ाया है, चैट जीपीटी जेमिनी ने परचम नया लहराया है। असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया, एक अलग युग दिखाया है, और हर सवाल का जवाब देने वाला कलयुग का गुरु कहलाया है, हर सवाल का जवाब देने वाला कलयुग का गुरु कहलाया है। दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने मेरे शब्दों को सुना और उन्हें अपने भावों में महसूस भी किया। आपका स्नेह और प्रोत्साहन ही मेरी लेखनी की सबसे सुंदर प्रेरणा है। धन्यवाद।

खुला आकाश कैरेक्टर में अभी आप सुन रहे थे रुचि पांडे की स्वरचित कविताएं। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मित्रों, जल ही जीवन है, पानी अनमोल है, पानी का एक एक बूंद बचाएं।

रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने में रक्तदान कर सकता है और अपने जीवन काल में न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है।

सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख आए तो इतराना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

0: चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों

0: को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुनुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record

0: विस्तार से 18 जून को राज्य की दो सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और राज्य से दो बार सांसद रहे परिमल नथवानी समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। झामुमो द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास में पार्टी विधायकों और सांसदों की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास जताया कि बैद्यनाथ राम राज्यसभा में झारखंड की जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हुए राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी करेंगे। वहीं बैद्यनाथ राम ने पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद अजय शर्मा ने गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री और झामुमो नेतृत्व से सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन में कोई गतिरोध या गलतफहमी नहीं है और गठबंधन राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
1: हेमंत जी से मुलाकात हुई, विस्तार से चर्चा हुई और गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों से हम जीतेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज बोकारो स्टील सिटी में पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिन्हा के आवास पर जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओरमांझी के कुचू स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे। तत्पश्चात वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय लौटेंगे, जहां जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब CRH की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट केंद्रकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपचार की गति में सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है, उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आहार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने रिम्स 2 विवाद मामले में जन आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे।

0: जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे और ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का दर्द कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुनाह है।
1: इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व विधायक सीता सुरेन ने नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।
2: आदित्यपुर का रहने वाला है, वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई।
1: झारखंड के ऊपर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव की बड़ी हलचल की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव झारखंड में रोमांच बढ़ा, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान तैयार। हिंदुस्तान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, संगठन की मजबूती के दिए मंत्र, मिशन 2029 पर मंथन। दैनिक जागरण लिखता है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सिविल जज भर्ती परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में लेंगे भाग। बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब। सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद गान शिक्षा कन्नड़ भाषा में।
1: आज इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दोड्डरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ। इसे गा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु के विद्यार्थी। गीत का भाव इस प्रकार है। भावात्मक एकता को सीखने के लिए महाविद्यालय है प्रकृति। सूर्य और चंद्र उदयास्त में कभी अपना क्रम नहीं तोड़ते, ऋतु परिवर्तन क्रमानुसार चलते हैं। पेड़ पौधे मानव से न कुछ मांगते और न आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पशु पक्षी आश्रितों को

बच्चों आराम से गाइए, दौड़ना मत। और यह है तीसरा और अंतिम चरण। इसमें पहला और तीसरा चरण एक तरह के हैं।

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बीए जयसिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सीवी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: बच्चों, अब आपने एक गीत सीख लिया ना? क्या इस गीत आपको कैसे लगा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बाकी बच्चों को भी सिखाएंगे ना?
2: कन्नड़ भाषा में अभी आप सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रसरंजन। पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। और आइए सुनते हैं फिल्म दीवाना का यह गीत, कुमार शानू का गाया हुआ, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म मोहब्बतें का ये गीत, जिसे गाया है ईशान, मनोहर सट्ठी, प्रीता, श्वेता पंडित और सोनाली ने, शब्द रचना आनंद भक्सी की, संगीत जतिन ललित का।

ईशान, मनोहर सट्ठी, प्रीता, श्वेता पंडित और सोनाली के गाए फिल्म मोहब्बतें की इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा गाया हुआ राग अलहैया बिलावल में ध्रुपद गायन। रचना चार ताल में निबद्ध है। पखावज पर संगत कर रहे हैं रामबचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, आप सुन रहे थे श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना चार ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे, पखावज पर संगत कर रहे थे रामबचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है, और हाँ, इससे आपको कुछ नुकसान भी नहीं होता है। और आप अपने जीवन काल में कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं रक्तदान करके। तो रक्तदान जरूर करें।

जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, आप तब तक नहीं गिरते हैं जब तक कि पैडल मारना न छोड़ दें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, सुख आए तो इतराना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। बाल सभा के लिए बस थोड़ा इंतजार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और आइए अब सुनते हैं बाल सभा। सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और मधु चौबे, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की।

0: कैसे हैं बच्चों? आपके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि आप एकदम ठीक हैं। और गर्मी की छुट्टी यानी इन दिनों का आनंद मम्मी के हाथों तरह तरह के बनाए भोजन खाकर और दोस्तों संग खूब खेलकर उठा रहे होंगे,
1: और बीच बीच में कहीं घूमने जाकर भी, या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर, दोस्तों के यहाँ, उनके जन्मदिन जैसे पार्टी में जाकर तरह तरह के व्यंजन खाकर खूब लुत्फ उठा रहे होंगे।
0: बच्चों, यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पार्टियों या कभी कभी घर में भी कुछ लोग अपनी भूख से ज्यादा भोजन थाली में ले लेते हैं और पूरा भोजन नहीं खा पाते।
1: ऐसे में थाली में बचा खाना कूड़े के डब्बे में फेंकना पड़ जाता है, जो कि भोजन की बर्बादी है। बच्चों, जानते हैं बच्चों, हमारी आपकी यानी सभी की थाली में भोजन कई लोगों की कड़ी मेहनत से आता है और इसे कभी भी फेंकना या बर्बाद नहीं करना चाहिए।
0: हम सबकी थाली तक अन्न पहुँचे इसके लिए हमारे किसान भाई बहन खेत में तेज धूप, बारिश, ठंड सब मौसम को सहते हुए कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं।
1: और इतना ही नहीं बच्चों, घर में लाने के बाद भी उसको मम्मी परिश्रम से साफ सुथरा करती हैं और फिर उसको पकाती हैं और तब आपको प्रेम के साथ थाली में परोसती हैं, है ना?
0: हाँ बच्चों, इतने सारे लोगों के द्वारा की गई मेहनत के

0: बाद ही भोजन हम सभी लोगों तक पहुंच पाता है। यदि हम उसे जरूरत से ज्यादा लेकर फेंक देते या खाना थाली में छोड़ देते हैं तो न सिर्फ खाना या अन्न का अपमान करते हैं बल्कि उसके साथ ही उन संसाधनों का भी अपमान करते हैं जो उसको तैयार करने में लगे होते हैं। जानते हैं बच्चों, दुनिया भर में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता और मजबूरी में उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है।
1: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि अपनी थाली के भोजन को बर्बाद नहीं होने दें, यानी भोजन उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। और बच्चों, हम आपको बता दें कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और इस खास दिन पर आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद भोजन बर्बाद नहीं करेंगे, थाली में खाना नहीं छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब बच्चों को हम क्या बताने जा रहे हैं
0: भैया? अब हम बच्चों को बताने जा रहे हैं छुट्टियों में सीखे नई नई कलाएं, क्योंकि छुट्टियों का दिन आया है, बच्चों के मन को भाया है। अभी न वे पढ़ने जाएंगे, अपने अंदर की कला को अब तो बाहर लाएंगे।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी कि अपने भीतर की कला को बाहर दिखाने और सीखने का ये खास समय होता है।
0: बच्चों, जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि आप लोगों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, सवेरे सवेरे जगने और स्कूल जाने की चिंता इस समय तो बिल्कुल नहीं होगी आपको।
1: ऐसे में आप अपने इस सुनहरे खुशनुमा दिन का उपयोग खेलने के साथ साथ बच्चों एक और अच्छे काम के लिए आप कर सकते हैं, और वो काम है नई कलाओं को सीखने का।
0: हाँ बच्चों, इस गर्मी की छुट्टी में आप अपनी पसंद के काम, जैसे कि आपको गाने में रुचि है तो संगीत का प्रशिक्षण ले सकते हैं, गायन सीख सकते हैं। किसी को नृत्य में रुचि है तो वे किसी प्रशिक्षक से नृत्य का प्रशिक्षण ले सकते हैं। यदि आपको कविता या कहानी बहुत पसंद है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। यदि चित्रकला सीखना और बनाना चाहते हैं तो उसे सीखकर उसमें अपनी कल्पना से सजा सवार सकते हैं।
1: इतना ही नहीं बच्चों, ओरिगामी और क्राफ्ट से अपनी कला को ऊंची उड़ान दे सकते हैं।
0: अगर कुकिंग में मन लगता है आपका बच्चों, तो मम्मी से आसान रेसिपी सीखकर कुछ कुछ चीजें भी बना सकते हैं आप, जैसे कि सैंडविच, मैंगो शेक वगैरह। नई चीजों को सीखने और अंदर की प्रतिभा को निखारने से आपका दिमाग और तेज होगा, आप अपने दोस्तों के बीच जीनियस कहलाएंगे।
1: तो आलस को कहो बाय बाय टाटा, और आज ही अपनी हॉबी रुचि के अनुसार अपने काम में लग जाइए, नई नई कलाएं सीखिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही वो समय है कुछ नया करने का और अपने अंदर के छुपे हुए सुपर कलाकार को बाहर निकालने का, जो देगा आपको एक अलग पहचान और आपके सपनों को खूबसूरत पंख। तो चलिए बच्चों, बातें तो होती रहेंगी लेकिन अब थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, और मनोरंजन हम आपको करवाते हैं एक बाल गीत सुनाकर।
2: लकड़ी

0: बालगीत तो भैया आपने बहुत अच्छा सुनवाया बच्चों को।
1: तो अब बच्चे भी तैयार हैं दीदी को सुनाने के लिए। तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: आपका नाम क्या है और क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
3: मेरा नाम शिवांश भारद्वाज है, मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक मजेदार कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है होमवर्क। होमवर्क आया झूम झाम, बोला कर लो मेरा काम। मैंने कहा जरा ठहरो भाई, पहले खेलू फिर पढ़ाई। पेंसिल बोली मुझे चला, नोटबुक बोला मुझे सजाओ, इरेजर बोला गलती मिटाओ, सब मिलकर मुझको समझा। मैंने सोचा बात है सच्ची, आदत होनी चाहिए अच्छी। बैग से अपनी पुस्तक निकाली, खुल गई ज्ञान की सुंदर हरियाली। गणित के प्रश्न बड़े थे न्यारे, कुछ आसान कुछ थे भारी। हिंदी की कविता गुनगुनाई, अंग्रेजी की स्पेलिंग दोहराई। कभी कभी मन थोड़ा घबराता, खेल का मैदान याद दिलाता। फिर मम्मी प्यार से समझाती कि मेहनत करके ही आगे जाते। पढ़ाई और खेल का होता मेल, यही सफलता की सच्ची रेत। रोज समय पर काम करूंगा, आलस से दूर रहूंगा, धन्यवाद।
2: वाह बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम माही पांडे है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ रही हूँ। आज मैं एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसे सूरज आता है। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती नहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चढ़ता है, ऐसे सूरज ढलता है, धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और आप क्या सुनाएंगे? पहले अपना नाम बताइए।
5: नमस्कार, मैं नव्या गुप्ता आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई। यह कविता मुझे बेहद पसंद है। जब मैं दुखी या हताश होती हूँ तो इस कविता को अवश्य सुनती हूँ। यह कविता मुझे एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह कविता हमें आगे बढ़ते रहने और जीवन की अस्थिरता को अपनाने का एक सशक्त संदेश देती है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधु घट टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो माद कता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई,
2: जो बीत गई सो बात गई। वाह बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम जनिशा मिश्रा है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी बारी आएगी। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आँखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगी हाँ आज मेरी बारी है। धन्यवाद।
1: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए बच्चों को कुछ और जानकारी दे दी जाए।
0: बिल्कुल। धरती हमारी सबसे न्यारी, इसमें बसती है दुनिया सारी। इसकी छटा है बड़ी निराली, चारों ओर फैली है हरियाली। सबसे सुंदर सबसे प्यारी, रंग रंगीली धरा हमारी। इससे ही जुड़ती है जीवों की खुशहाली, देती हम सबको ये खुशियाँ सारी।
1: वाह दीदी वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कविता के माध्यम से। और आपने जो बताया कि हमारी धरती सभी प्राणियों को ढेर सारी खुशियाँ देती है। जानते हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी यानी धरती को अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
0: दरअसल इसके 71% हिस्से पर महासागर फैले हुए हैं। ये महासागर हमारी धरती के दिल के रूप में है, जो धरती को जीवन दायिनी बनाने में सहायता करते हैं। बच्चों,
1: लेकिन बच्चों आज ही महासागर हम इंसानों की गलत गतिविधियों के चलते गहरे संकट में आने लगे हैं।
0: यदि हमें अपनी धरा यानी नीले ग्रह को बचाना है तो सबसे पहले अपने महासागरों की सुरक्षा करनी होगी। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम यदि छोटे छोटे प्रयास करें तो एक बड़ी सफलता महासागर को बचाने के रूप में हमें मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं इन छोटे छोटे कदमों के बारे में।
1: सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जहां तक संभव हो सके बच्चों उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए।
0: प्लास्टिक वाले कचरों तथा अन्य कचरा नदियों समुद्रों में नहीं फेंकना चाहिए।
1: महासागर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं बच्चों, इसलिए उनका पानी अम्लीय होता है जो समुद्री जीवों को हानि पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम हो इसके लिए छोटी या कम दूरी के लिए साइकिल अथवा पैदल चलना चाहिए, जो ऊर्जा की भी बचत करेगा।
0: तो बच्चों, इस तरह से छोटे छोटे हमारे प्रयासों से महासागरों का प्रदूषण कम होगा, जिससे इस धरती को सुरक्षा मिलेगी। तो हम सब मिलकर करें प्रण की कल यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस पर लेंगे ये संकल्प कि छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे, कपड़े और जूट के थैले से काम हम चलाएंगे।
1: नदियाँ समुद्र पहाड़ हमारे, इसमें ना कभी कचरा फैलाएंगे, व्यर्थ पानी ना गवाएंगे, थोड़ी दूरी के लिए पैदल ही हम चलकर जाएंगे, करेंगे सुरक्षा महासागरों की, हम खुद सुरक्षित हो जाएंगे।
2: तो बच्चों, अभी आपने जाना कि महासागरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इन महासागरों को बचाने का दायित्व भी हमारा है।
1: बच्चों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगती

0: है और इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू, है ना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप या अत्यधिक गर्मी में रहता है तो वो इससे बीमार पड़ सकता है। लू लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करने लगता है।
1: बच्चों, लू लगने के लक्षण है तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, बहुत अधिक प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना। लू से बचने के लिए जानते हैं बच्चों क्या उपाय करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: और बच्चों, दोपहर 12 बजे से, और हम तो ये कहते हैं कि अभी तेज गर्मी है तो दोपहर नहीं, 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक धूप सबसे तेज होती है और इस समय बाहर खेलने या घूमने से बचना चाहिए। बच्चों, हल्के और सूती कपड़े पहनना चाहिए, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाँ, एक बात और है, अगर आपको बाहर निकलने की जरूरत ही पड़ जाए तो बाहर निकलते समय टोपी जरूर पहने, छाता लगाएं या गमछे का उपयोग करें।
1: बच्चों, गर्मी के मौसम में पौष्टिक और हल्का भोजन भी करना चाहिए। गर्मी में ताजे फल, सलाद, दही, छाछ और घर का बना हल्का भोजन खाना चाहिए। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करिए, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम और नारियल का पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इसको जरूर खाना और पीना चाहिए।
0: हाँ बच्चों, और यदि किसी को लू लग ही जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं, नींबू पानी दें या ORS का घोल या छाछ पिलाएं। शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, यदि हालत गंभीर लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, गर्मी का मौसम मजेदार तो हो सकता है लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है,
0: और इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर बच्चों हम गर्मियों में स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लू से बचने के उपाय तो आप जान गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने दोस्तों को इन जानकारियों से अवगत कराएंगे। और अब दीदी, अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए, तो बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं एक बाल कहानी और कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी।
1: उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। बच्चों,
0: पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर सा कुत्ता था और कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौं भौं कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था।
1: एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत उसे आन पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे?
0: लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा।
1: सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में रख दो मेरे पास। जब तुम हमारे सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा।
0: बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए।
1: कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी

0: का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा।
1: इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वो सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्तों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो नाराज हो गया, सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान नहीं रखी, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ न देखा ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है।
0: लाखा तो चकित ही हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है।
1: तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब दीदी, हम हर हफ्ते किसी न किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, तो आज के जो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं,
0: महान स्वाधीनता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा,
1: जिनको हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, जननायक और आदिवासी समाज के गौरव थे बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। हर वर्ष 9 जून को उनका बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है।
0: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। बचपन से ही बिरसा अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और साहसी थे।
1: बच्चों, बिरसा को बचपन में भेड़ बकरी चराने का काम दिया जाता था। जब उन्हें भेड़ बकरी चराने के लिए कहा जाता था, तो वे उन्हें छोड़कर पेड़ की किसी शाखा पर बैठकर बांसुरी बजाने लग जाते थे। इन सबसे परेशान होकर माता पिता ने बिरसा को उनके मामा के गाँव में भेज दिया, जहाँ से बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी हुई। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे। बच्चों, पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें आगे पढ़ने की हिदायत दी। वो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की सलाह उन्होंने दिया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो वापस फिर अपने गाँव लौट आए।
0: उस समय आदिवासी समाज अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से पीड़ित था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे और उन्हें जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। बिरसा ने इन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को देखा और इसके विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया।
1: बच्चों, युवावस्था में उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बिरसा का मानना था कि समाज की उन्नति शिक्षा, एकता और आत्मविश्वास से ही संभव है। उन्होंने लोगों को नशाखोरी, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। लोग उन्हें धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहकर भी पुकारते थे।
0: बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया, उसे उल गुलान अर्थात महान जन क्रांति कहा जाता है।
1: सन 1899 और 1900 के दौरान उन गुलान आंदोलन अपने चरम पर था बच्चों, और बिरसा और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी। इस आंदोलन से अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया और अंत में 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
0: गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया, लेकिन ऐसा भी मत है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। इतने कम जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए वे उन्हें अमर बना गए। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए उनके जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
1: बच्चों, उन्होंने अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 9 जून बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी को शहीद बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प करना चाहिए। बच्चों, भारतवर्ष सदैव इस महान क्रांतिकारी पुत्र का ऋणी रहेगा। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है।
0: चलते चलते हम आपको बता दे बच्चों कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी।
1: तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद।

आप सुन रहे थे बाल सभा, सूत्रधार थे अवधेश कुमार और मधु चौबे, प्रस्तुति थी गौरव पांडेय की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय स्थानीय कार्यक्रम जुहार रांची। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना
1: और मैं विनोद।
0: हम दोनों की तरफ से आप सभी श्रोताओं को जोहार
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अब आ चुका है जून का महीना, क्यों विनोद?
1: बिल्कुल,
0: यह महीना कितना खास है ये तो शायद आप सबों को मालूम ही होगा। जून का महीना अपने साथ मौसम के बदलाव का संदेश लेकर आता है। तेज धूप और गर्मी के बाद अब आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है। सुबह शाम की ठंडी हवाएं, कभी कभार होने वाली बारिश और मिट्टी की सौंधी खुशबू मानसून के आने का संकेत दे रही है।
1: प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। बारिश की हर बूंद हमें बताती है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पेड़ हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं और नदियां हमें निरंतर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उम्मीद का दामन कतई नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जी हाँ श्रोताओं, अभी हम जून का महीना, बारिश और मानसून के आगमन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना विनोद जी साथ ही हम अपने श्रोताओं को आज के मौसम की जानकारी भी दे दें।
4: बिल्कुल, अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो अगले सप्ताह की अगर हम बात करें तो रात की नींद आपकी उड़ सकती है और दिन में तो पसीने छूटेंगे ही। मौसम विज्ञान केंद्र का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में गर्मी और बेचैनी काफ़ी बढ़ने वाली है। अगले सप्ताह मौसम में बदलाव होगा और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। दिन में पारा 43 के पार होगा और रात में भी 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच यह तापमान रहेगा। जहाँ तक बात है कि आखिर मौसम में ये परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, तो मौसम विज्ञान विभाग के ही अनुसार हाल ही में हुई बारिश के बाद दक्षिणी दिशा से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिससे वातावरण में भारी नमी बनी रहेगी। इस नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से 4 से 5 डिग्री अधिक गर्मी का एहसास होगा। दरअसल गर्मी के मौसम में नमी बढ़ जाने से हवा अधिक गर्म महसूस होती है और लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं।
2: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

0: विनोद जी, जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में राजा महाराजा, युद्ध और पुरानी घटनाओं की तस्वीर उभरती है। लेकिन इतिहास केवल इतना ही नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि समाज कैसे विकसित हुआ, लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया और समय के साथ जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए।
1: बिल्कुल, आज हम जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और जिस समाज में रह रहे हैं, उसके पीछे की भी अगर हम बात करें तो इतिहास की एक लंबी यात्रा छिपी हुई है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
0: हमारा जोहार रांची कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने श्रोताओं को इतिहास में घटी घटनाओं की हर दिन की जानकारी देता है। और आज है 7 जून, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की घटनाओं की जानकारी दे दे। विनोद जी,
1: बिल्कुल, आज ही के दिन 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बक्सर के पास चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था।
0: और 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय निधन हो गया था, जिनकी याद में ताजमहल बना।
1: और अगर 1893 की बात करें तो आज ही के दिन महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था।
0: और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन 1955 में अपनी ऐतिहासिक सोवियत संघ की यात्रा शुरू की, जिसे भारत में भिलाई और बोकारो जैसे आधुनिक स्टील प्लांट लगाने का रास्ता साफ हुआ।
1: इतिहास की जानकारियां तो हमने अपने श्रोताओं को दे दी और अब समय हो चला है एक मधुर गीत अपने श्रोताओं को सुनवाने का।

0: जोहार रांची, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो चलिए अब हम आपको ये जानकारी दे दें कि आज यानी 7 जून को किन प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे, इनका जन्म आज के ही दिन 1914 में हुआ। 1974 की बात करें तो आज ही के दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का भी जन्म हुआ था और भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित का भी जन्म आज के ही दिन हुआ था।
1: और अमृता राव, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1981 में हुआ था। तो चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म इश्क विश्क से ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होगा। तो आइए ये अब हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमारे किन प्रसिद्ध हस्तियों ने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। 1954 ईस्वी में आज ही के दिन एलेन ट्यूरिंग, जो कि एक अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: और बी डी सत्ती, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इनका निधन भी 2002 में आज ही के दिन हुआ। भारत के एक नृत्य गुरु नटराज रामकृत ने भी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा।

0: आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का दिन यानी कि 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि भोजन मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन केवल भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन का सुरक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग दूषित और असुरक्षित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग इसके प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर महत्व दिया गया। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा के रूप में मनाने की घोषणा की।
1: और साथ ही आज के दिन विश्व देखभाल दिवस यानी वर्ल्ड केयरिंग डे भी मनाया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर एक दूसरे के प्रति स्नेह, दया और देखभाल की भावना को बढ़ावा देता है। बातें तो बहुत हो गई, अब आइए अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

विनोद जी, गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है। एक दो दिन की मौज मस्ती के बाद अब बच्चों के मुंह से यही सुनाई दे रहा है, मम्मा बोर हो रहा हूँ। तो अपने लाडले की बोरियत पर परेशान होने की

0: कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश हो जाइए और अपने बच्चे से कहिए कुछ नया सोचो, क्योंकि उनकी बोरियत वह समय है जिस वक्त वह बिल्कुल खाली होते हैं। यह वक्त है बहुत कुछ नया करने और सीखने का। यह वह वक्त है जिसमें वह खुद से देखने, सोचने, समझने और निर्णय लेने का हुनर सीख सकते हैं, कुछ नया गढ़ सकते हैं। बोरियत से आत्मनिर्भरता आ सकती है। जब बच्चे अकेले होते हैं तब खुद से अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं ताकि वह अच्छा महसूस कर सकें।
1: यानी इस दौरान वह खुद को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि कैसे वह अपने वक्त को प्रबंधित करें और बोरियत के उस वक्त को मनोरंजन से भर दें। इससे वह खुद के लिए छोटे छोटे निर्णय लेना सीख पाते हैं और यही छोटे छोटे निर्णय उन्हें भविष्य के बड़े निर्णयों की नींव रखने में मददगार होते हैं। बोर होना यानी जहन में सवाल का आना कि अब क्या करूं, और यहीं से शुरू होता है किताबी दुनिया से अलग कुछ सीखने का सिलसिला। गर्मी की छुट्टियां क्या हैं, बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, पर उन्हें सही मायने में इसका मतलब समझाना जरूरी है। यह वह वक्त होता है जिसमें बच्चे अपनी रफ्तार से जी सकते हैं। खेलना कूदना, दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनना आदि भी सीखते हैं। मोबाइल और स्क्रीन ही मनोरंजन का साधन नहीं है, इससे अलग कई तरीके हैं, जैसे दीवार पर कुछ बनाकर, मिट्टी के कुछ खिलौने बनाकर, या फिर नई नई कहानियां गढ़कर। कुछ भी जो उनके दिल में आए वो करें और बनाएं जिससे वो कुछ सीख सकें।

0: श्रोताओ, आज हम एक बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्रोताओ, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर एक दिन पूरी दुनिया में बिजली ही बंद हो जाए तो क्या होगा? ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं चलेगा, फ्रिज बंद रहेगा, पंखे और एसी नहीं चलेंगे और रात में पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। ना लाइट होगी, ना इंटरनेट, ना टीवी, पूरा जीवन एकदम रुक सा जाएगा।
1: बिजली बंद होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस और सारे काम रुक जाएंगे, पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ी बात, लोग अपने फ़ोन से दूर हो जाएंगे। यह सिर्फ डराने की बात नहीं है बल्कि यह हमें एक ज़रूरी बात भी सिखाती है, हम बिजली पर कितनी ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी टेक्नोलॉजी पर टिकी है और हम प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं।
0: बिजली हमारे जीवन की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता सही नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनना चाहिए। श्रोताओं, आज हमने एक अलग कल्पना की के जरिए जाना कि अगर बिजली बंद हो जाए तो जीवन कैसा हो सकता है। उम्मीद है कि यह विषय आपको भी यह सोचने पर मजबूर करेगा।

0: श्रोताओं, अब हम बात करेंगे उस सुंदर भूमि की जो अपनी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के लिए पूरे देश में जानी जाती है, और वह है हमारा झारखंड। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली इस राज्य को एक अनोखी पहचान देते हैं।
1: झारखंड को अक्सर प्रकृति की गोद में बसा राज्य कहा जाता है। यहाँ के जंगल और पहाड़ न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। झरनों की आवाज़, पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरा वातावरण मन को शांति देता है। यहाँ की प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सादगी कितनी जरूरी है।
0: यहाँ के आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, लोकगीतों और नृत्यों को आज भी जीवित रखा है। छऊ नृत्य, झूमर और कर्मा जैसे लोक नृत्य यहाँ की पहचान है। मांदर की थाप और लोकगीतों की धुन आज भी गांव में उत्साह भर देती है।

0: श्रोताओं, घड़ी की सुई अब हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें, तो अब इजाज़त दीजिए मुझे ज्योत्सना
1: और विनोद को। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।
0: जोहार, नमस्कार।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है फिल्म जिंदगी तेरे नाम से। के की आवाज में इस गाने को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने और रचना है जलीश शेरवानी की। और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं अपर बाजार रांची से नीरज सोनी, ज्योति कुमारी, सीमा सिंह, पिंकी रानी, राजेश, अमित, दीप्ति, सोनी कुमारी और इनके ढेर सारे साथीगण। बरकाकाना रामगढ़ से अमृत सिंह, हरिहर सिंह, पीयूष कुमार, पलक कुमारी, पीहू, दिव्या, तेजस और संगीता कुमारी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म कलयुग से है। तर्ज बनाई है फैजल रफ़ी ने और लिखा है साईद कादरी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबेहा ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो पेश है आप सबों के पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है कलयुग।

सारिका टोप्पो, प्रियंका टोप्पो, अलका टोप्पो और जूली, खूंटी से मीनाक्षी कुमारी, प्रिया कुमारी, सिमी कुमारी, रिंकू, नीति, मीनू, राज, गौरव और पंकज।

इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अब अपनी दोस्त ज्योत्सना को। नमस्कार।

0: शब्द नमस्कार दिलों को जोड़ देता है और रिश्तों में भर देता है प्यार और सम्मान। इसी सुंदर भावना के साथ आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी आप सभी का स्वागत करती है।
1: यही प्रेम और सम्मान के साथ आपकी एक और सखी लता भी आप सभी बहनों को तहे दिल से स्वागत करती है। आप बहनों का और तो इसी बात पर स्वीकार कीजिए हम दोनों सखियों का प्यार भरा स्नेह सिल नमस्कार।
0: बहनों अक्सर हम पौष्टिक और संतुलित भोजन की बातें करते हैं और ये सही भी है कि भोजन हमारे जीवन का आधार है। भोजन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, क्यों लता?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुभाषिनी, तुमने सही कहा। एक कहावत है कि किसी भी घर का रास्ता उसके रसोई से होकर गुजरता है ना? लेकिन हमारा मानना है कि उस घर की सेहत का रास्ता भी रसोई से ही तय होता है।
0: बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है क्या वह पूरी तरह से सुरक्षित है? आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेत से लेकर रसोई तक पहुँचते पहुँचते भोजन कई तरह के रसायनों, कीटनाशकों और मिलावट से होकर गुजरता है।
1: हाँ सखियो, मुनाफे की होड़ में फसलों पर जहरीले स्प्रे किए जा रहे हैं, गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं और बाजारों में मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रहे हैं। यह दूषित भोजन हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, लेकिन हमें जागरूक होना है और उसका समाधान भी ढूंढना है।
0: हाँ, तभी तो हर वर्ष 7 जून यानी आज के ही दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति तक सुरक्षित और पोषक आहार पहुंचे, यानी खेत से लेकर थाली तक भोजन की यात्रा हर चरण में उसकी शुद्धता और सुरक्षा कायम रहे।
1: यानी समस्या तो है बहनों, लेकिन हमें उसके समाधान तक पहुंचना होगा। पहली कड़ी है किसान, जिन्हें रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। दूसरी कड़ी में व्यापारी और ट्रांसपोर्टर को भी हम साथ में रख सकते हैं, जिन्हें भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें कोल्ड स्टोरेज और साफ सफाई का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, सरकार और प्रशासन को भी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। खाद्य सुरक्षा की कड़ी बहुत ही लंबी है, इसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। हम भी अगर जागरूकता के साथ खरीदारी करें, खरीदारी के समय पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखें, सामग्री देखें, ये सब देखकर खरीदे ना, तो सुरक्षित भोजन हम घर ला सकते हैं।
1: हाँ, हर जगह सुरक्षित भोजन तब तक संभव नहीं जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। असुरक्षित भोजन देश के विकास को पीछे धकेलता है, क्योंकि एक बीमार नागरिक कभी भी मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता।
0: बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है लता। अगर हमें समृद्ध, ऊर्जावान, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें अपनी खाद्य आदतों को सुधारना होगा और शुद्धता को प्राथमिकता देनी होगी।
1: हाँ वो तो है बिल्कुल बहनों, अगर हम ध्यान देंगे तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। बहनों आपको बता दें कि भारत में स्ट्रीट फूड

0: शादी का खाना और त्योहारों पर बड़े भंडारे आम हैं। ऐसे में मिलावट, बासी खाना और गंदे पानी का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इट राइट इंडिया अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है।
1: बिल्कुल, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यह कहावत बताती है कि भोजन का सीधा असर हमारे शरीर और सोच पर पड़ता है। हर साल 7 जून यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षित भोजन सबका अधिकार है और साथ ही हम सबकी जिम्मेदारी भी है।
0: जिम्मेदारी तो है, क्योंकि हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है सुभाषिनी, बहनों के प्रति। तो जानकारी हो गई, चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन क्यों ना अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए बहनों के साथ सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर चलेगी हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी।
2: बिल्कुल बहनों, अब हम चलते हैं एक खास जानकारी की ओर। बातचीत करेंगे हम आज के मेहमान से। आज का विषय है स्वस्थ खाना, हमारी सेहत का खजाना। आज की हमारी मेहमान है गुरप्रीत कौर, जो कि एक डाइटिशियन है, और इनसे बातचीत कर रही है हमारी सखी लता।
1: स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित और पौष्टिक भोजन है। हमारा शरीर जिस प्रकार एक मशीन की तरह कार्य करता है, उसी प्रकार उसे सही ढंग से चलाने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन न केवल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ खाना वास्तव में हमारी सेहत का सबसे बड़ा खजाना है। आज इसी विषय पर हमसे बात करने जा रही है हमारी आज की खास मेहमान गुरप्रीत कौर, जो क्लिनिकल डाइटिशियन है और लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। गुरप्रीत जी, आपका हमारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, मुझे आकाशवाणी में बुलाने के लिए। आज हम दोनों मिलके थोड़ी रोशनी डालेंगे स्वास्थ्य और बैलेंस डाइट के विषय पे।
1: जी, बहुत खूब। मैम, जैसा कि आज स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ भोजन क्या है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खान पान कितना महत्वपूर्ण है।
3: जी जरूर लता जी, आजकल हम सभी अपनी पढ़ाई, नौकरी और परिवार में इतने व्यस्त हैं कि अक्सर अपने खाने पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सेहत की शुरुआत हमारी थाली से ही होती है। आज के समय में स्वस्थ भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देना। अगर आपका खाना आपको एनर्जी दे रहा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपका वेट मेंटेन रखता है और आपको दिन भर एक्टिव रखता है, तो वहां वह स्वस्थ भोजन है। आजकल लोग फिटनेस, स्किन हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, इन सब की शुरुआत अच्छी डाइट से ही होती है।
1: वाह, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया मैम आपने। मैम, हमारे दैनिक जीवन में संतुलित आहार का क्या महत्व है?
3: जी, आज की लाइफस्टाइल में सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। एक बैलेंस डाइट हमें दिन भर एनर्जी देता है, बार बार लगने वाली भूख को नियंत्रण करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके वेट को संतुलन में रखता है, और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन जैसी समस्याओं को भी कम करता है। इसलिए हमारी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। अब मैम, जंक फूड और फास्ट फूड के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं?
3: इनके काफी नुकसान हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं, बल्कि यह है कि लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पैक्ड स्नैक्स में। इन सब में अधिक नमक, चीनी, मैदा और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। इनका रोज या लगातार सेवन करने से वेट गेन, डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का

0: कारण बन सकता है, क्योंकि बच्चे भी बचपन से ही इन चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं। याद रखना याद रखें कि सुविधा वाला खाना हमेशा सेहत वाला खाना नहीं होता है।
1: वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि सुविधा वाला खाना जो होता है वो सेहत का खाना नहीं होता है, और हमें बिल्कुल इस बात को ध्यान देना चाहिए। मैम, आपसे
0: जी
1: जानना जी जानना चाहेंगे मैम कि स्वस्थ भोजन में किन किन पोषण जो पोषक तत्व हमें पोषण जो मिलता है, तो पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। जी
0: जी जी आज की थाली में सिर्फ रोटी सब्जी नहीं बल्कि संतुलन भी होना चाहिए। हर भोजन में प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, दही, अंडे, फाइबर्स होने चाहिए जैसे सब्जियां, फल, सलाद, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जैसे रोटी, बाजरा, ज्वार, ओट्स। हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए जैसे नट्स एंड सीड्स। और सबसे जरूरी, आप पानी पीना ना भूले। दिन भर में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना भी बहुत जरूरी है। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी थाली के आधे हिस्से को सब्जियों से भरे या सलाद, सब्जी और सलाद से भरे, और बाकी बचे हुए आधे हिस्से को आप प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरे।
1: वाह, ये तो वाकई बिल्कुल आपने एक संतुलित थाली के बारे में बताया, बहुत ही खूबसूरती से इसका जवाब आपने दिया इस प्रश्न का। मैम मैम, हम यह भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आजकल जीवन शैली बदल रही है, तो बदलती जीवन शैली का खान पान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
0: जी, आज हम पहले की तुलना में ज्यादा बैठे रहते हैं और कम चलते हैं। ऑनलाइन काम, मोबाइल देखना, देर रात तक जागना और बाहर का खाना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। इसके कारण वेट गेन, पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। अच्छी बात तो यह है कि अगर आप छोटे छोटे चेंजेस जैसे घर का खाना खाना, रोज कम से कम 30 मिनट चलना, प्रॉपर पानी पीना, ये सब अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इन तमाम बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। बहुत
0: जी
1: खूबसूरत सा जवाब जी। मैम, स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
0: जी स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, देखिए आज जानकारी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन जानकारी सही होनी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जानकारी जो भी आपको मिल रही है वो सही हो। हमें बच्चों को बचपन से ही सही खाने की आदत सिखानी चाहिए कि कैसे उनको बचपन से ही सही खाना खाना है, क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं है। घर पर फल और सब्जियों को ज्यादा उपलब्धि देनी चाहिए, ज्यादा फल सब्जियां रखनी चाहिए अपने घर पर। पैकेट वाले खाने को कम खरीदें, या फिर आप जब भी खरीद रहे हैं तो उसका लेबल आपको पढ़ना आना बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पैकेट वाले खाने को लेबल देख के ही खरीदें। और एक बहुत जरूरी बात है, जैसे हमने एक बैलेंस प्लेट के बारे में बात किया है, तो आप हमेशा एक प्लेट मेथड जरूर फॉलो करें कि जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो आपके थाली का एक आधा हिस्सा फाइबर्स होना चाहिए जिसमें सलाद और सब्जियां आती हैं, और बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा में एक चौथाई हिस्सा आपकी प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए जिसमें दाल, अंडे, दूध, दही, ये वाली चीजें आती है, और बाकी बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए जिसमें राइस, रोटी, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ये वाली चीजें आती हैं। सो ये वाली चीजें हमें अपने डेली रूटीन में जरूर से जरूर इंक्लूड करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हमें करनी चाहिए, और यदि हम इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि स्वस्थ जो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम अमल होना चाहते हैं, वो हम जरूर हासिल कर सकते हैं। मैम, स्वस्थ
0: जी
1: खाना जी, स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना विषय पर आपका हमारी बहनों के लिए क्या संदेश है?
0: मेरा संदेश यह है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डाइट को एक सजा नहीं बल्कि आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए।

0: और आज की दुनिया में हम सफलता, पैसे और करियर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली दौलत आपकी सेहत है। अच्छी सेहत के बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि पूरी खुशी नहीं दे सकती आपको। हर दिन छोटे छोटे खाने की आदत हमारे भविष्य का स्वास्थ्य तय करता है, और इसलिए आपकी थाली रंग बिरंगी सब्जियों, फलों, दालों और पौष्टिक भोजन से भरिए। और याद रखिए, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। स्वास्थ्य खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।
1: वाह, बहुत खूब जवाब मैम। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, हमारी बहनों को इतनी उम्दा जानकारी दी। आप से बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें आपको सुन रही हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें आपने जो भी तमाम टिप्स दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करेंगी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी लता।
2: बहनों, आप अभी सुन रही थी भेंट वार्ता, स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना। इस विषय पर बातचीत कर रही थी गुरप्रीत कौर और इनसे बातें कर रही थी लता रानी। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे लता।
1: बिल्कुल सुभाषनी, तो जैसा कि हमारा एक और फर्ज बनता है बहनों के साथ मनोरंजन की दुनिया में जाने का भी, तो चलो एक बार मनोरंजन की दुनिया की सैर कराएं।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद लता थोड़ी सी बातें हम बहनों से कर लेते हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि आज हमारे पास उनकी सेहत से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है, लेकिन हम बात करेंगे योग के बारे में।
1: बिल्कुल, क्योंकि योग जो है वो हमें निरोग रखता है, तो हमें नियमित योग करना चाहिए। योग
0: बिल्कुल।
1: करें, निरोग रहें।
0: बहनों, योग जो है ना, वो हम सभी जानते हैं एक प्राचीन कला है जो मन और शरीर को जोड़ती है। यह एक व्यायाम है जिसे हम अपने शरीर के तत्वों को संतुलित करके अभ्यास करते हैं। इसके अलावा यह हमें ध्यान लगाने और आराम करने में मदद करता है। इसके अलावा योग हमें अपने शरीर के साथ साथ मन पर भी नियंत्रण रखने में मदद करता है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें हर इंसान किसी न किसी तनाव में, चिंता या बीमारी से जूझ रहा है। खराब जीवन शैली के कारण मोटापा बढ़ रहा है, शुगर हो रहे हैं, मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं लोग, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ना, वो आम हो चुकी हैं।
1: और यदि हम नियमित योग करते हैं तो ये तमाम बीमारियां जो हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि योग करें निरोग यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन की हकीकत है। सूर्य नमस्कार, तड़ासन और भुजंगासन जैसे आसनों से शरीर का लचीलापन और ताकत बढ़ती है। और अगर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से हमारे मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे तनाव और गुस्सा, आजकल हमें गुस्सा हर बात पर बहुत जल्दी आती है, चाहे किस भी आयु के वर्ग में हो, तो गुस्सा भी है वो नियंत्रित हमारा योग ही करता है, इससे गुस्सा दूर होता है। और योग को सही मायने में स्वयं और दुनिया के साथ सामंजस्य में रहने का विज्ञान कहा जाता है। यह न केवल हमारे शरीर को फिट रखने के लिए है बल्कि हमारे मन और आत्मा को सक्रिय रखने में भी हमारी बहुत बड़ी मदद करता है।
0: और ये अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को तो एक साथ जोड़ता ही है, और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को भी बदल कर हमें खुश, शांत और संतुष्ट रखने में सक्षम बनाता है। यह हमें अधिक सकारात्मक, आशावादी और खुश मिजाज भी बनाता है। योग व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इसके अलावा योग हमारे दिमाग को तेज भी करता है और हमारी बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है।
1: यानी कि एक योग के कितने फायदे हैं बहनों, वो हम देख ही सुन सकते हैं। और योगासनों का नियमित अभ्यास मन और शरीर दोनों को जो है वो स्वस्थ बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। कम उम्र से ही योग की आदत बच्चों में डाले बहनों, ताकि उनकी ये हैबिट एक रूटीन बन जाए। योग बहुत गुणकारी है। नियमित योग रक्त संचार को बढ़ाने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर को कई तरह की बीमारियों के जोखिम से बचाता है। इसके अलावा शारीरिक कार्य क्षमता और सहन शक्ति में भी सुधार करने में योग सहायक है। योग के बढ़ते चलन के कारण लोगों को योगाभ्यास से होने वाले फायदों के बारे में तो पता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है

0: कि अधिक योग करने से अधिक लाभ होगा।
1: बिल्कुल। तो बहनों, योग करें और निरोग रहें, है ना। और इसी के साथ ही लता, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो बहनों को बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ आपकी सखी सुभाषिनी
0: और लता को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं संगीता स्नेह और साथी।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9311504

0: 1104। जी हाँ, 9311504004।
1: हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी।
2: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
1: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
2: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते। ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है। उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
1: मतलब ये नेचुरल है सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं, या ठीक हो जाएं, या इन चीजों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते, पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है, तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं। पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका। माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं, माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है, अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके। और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है? और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है। पर प्रियंका, हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल।

0: के बच्चे हैं उनमें ये बदलाव हम देखते हैं, जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं, उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हाथ उठाना कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं। और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूंकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त

0: हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए दोस्तों। जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे ज़्यादा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। सो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
1: हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में दो बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार।
0: और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

रोहित शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान

0: द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 40 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज, रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित, रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादक मीनाक्षी राय के साथ मैं आसिया नाजली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रवक्ता तथा आईटी एवं मीडिया सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इससे पहले अपने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्री नवीन बोकारो पहुंचे। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं, हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
0: रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में श्री नवीन ने शहीद निर्मल महतो चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर आगे की रणनीति और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी है। झारखंड के सिमडेगा जिले की महिला किसानों के उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल का एक शानदार और सशक्त उदाहरण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अपीडा के निरंतर प्रयासों से स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य, महिला किसानों को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स

0: हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। पाकुड़ में जिला खनन कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी किए जाने को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने पत्थर खदानों का लीज हासिल करने के लिए खनन कार्यालय द्वारा निर्गत सन्निहित रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी कर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण रांची से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं खनन पट्टा हासिल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए। जामताड़ा जिला में उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम ने जिले के चिन्हित पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
1: हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक पंचायत में जाके ग्राउंड लेवल पे जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका हो सके।
0: कोडरमा के झुमरी तिलैया में जूट से उत्पाद तैयार कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार करने में जोर जोर से जुटी हैं। इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं महिला सशक्तिकरण के साथ प्लास्टिक मुक्त के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं।
2: मेरे साथ 20 महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 से 20 21 साल के हैं, और ये सब को हम एक जगह इकट्ठा किए। जब उन लोग के हाथ में पैसा आया तब ये लोग अच्छा लगा कि ये अपना पैसा है। अब सोचते हैं कि ये कुछ धीरे धीरे अगर ये लेडीज भी सीखे और अपना व्यापार कर सके और इससे भी और आगे जाएं।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची द्वारा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह और महापौर रोशनी खलको शामिल हुए। सभी अतिथियों ने युवाओं को फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और झारखंड का मान बढ़ाया। 78 देशों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच रोशन ने अपने उत्कृष्ट कौशल, शारीरिक संतुलन और कठिन आसनों से जजों को प्रभावित कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा IT सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज। रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित। रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शोभा गुरटू को। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले मिस्र खमाज में ठुमरी, बोल है आ कैसे धरू धीर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, और कलाकार थी शोभा गुरटू। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: Meanwhile, the Met Department has forecast heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. Northwest India and central India are likely to experience a rise in maximum temperatures by 2 to 6 degrees Celsius over the next 3 days. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increased pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. We have a report from our West Asia correspondent amid fresh escalations in the region.
1: On the 100th day of the conflict, tension still prevails in the Strait of Hormuz, with kinetic activity continuing to threaten one of the world's most important maritime corridors. U.S. Central Command says American forces intercepted two Iranian one-way attack drones on Sunday after determining they posed a threat to international shipping. The incident follows Friday's downing of four Iranian drones and subsequent U.S. strikes on Iranian radar and surveillance installations at Goruk and Kesham Island. Iran responded on Saturday by launching ballistic missiles towards Bahrain and Kuwait, with U.S. officials reporting that most were intercepted before reaching their targets. The crisis has also spilled into other fronts in West Asia. In southern Lebanon, a Lebanese military vehicle near Nabatea was struck during an Israeli operation, resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
0: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister said that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi said that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक चार साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
3: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
4: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
5: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
2: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
6: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत

0: 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।

श्रोताओं, अभी आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म हॉलीडे से ये गाना सुन रहे थे, जिसे संगीत से संवारा था प्रीतम ने और शब्द रचना थी इरशाद कामिल की। अगला गाना है फिल्म एलओसी कारगिल से सोनू निगम की आवाज़ में। धुन है अनु मलिक की और जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है।

अगली पेशकश है शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म मणिकर्णिका से। शंकर एहसान लॉय ने संगीत तैयार किया है और बोल हैं प्रसून जोशी के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और अब अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मिशन रानीगंज से। सुर है बी पराग के, धुन बनाया है आरको ने, और ये रचना है डॉक्टर कुमार विश्वास की।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला एक संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक

0: कभी 2 घंटे के बाद में लौटेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के मामले में राज्य की सत्ता में शामिल गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री ने रांची में कहा कि चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के नामों का अंतिम निर्णय पार्टी लेगी।
2: गठबंधन का आपस में ही खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही एक मजबूत और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल है। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में रईस फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ। संगीतबद्ध किया है जैम 8 ने और शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

झारखंड की खूबसूरत राजधानी रांची से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रांची का स्नेह भरा अभिवादन। तो आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। यह वह मंच है जहां संगीत की मिठास हर दिल तक पहुंचती है, जहां हर धुन एक कहानी कहती है। संगीत केवल आवाज नहीं, एक एहसास है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। रांची मेलोडीज इसी एहसास को समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत का।

श्रोताओं, अभी आप हिम्मतवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे, जिसे गाया था बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और ये रचना थी समीर की। और अब बारी है एक मधुर और भावनात्मक गीत की, जो दिल को छू जाए और मन को शांति दे। तो पेश है एम करीम और चित्रा की आवाजों में फिल्म इस रात की सुबह नहीं से ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत से संवारा है एम करीम ने और शब्द रचना है निदा फजली की।

शाम ढलते ही जब थकान महसूस हो तो संगीत सबसे बड़ा सुकून बन जाता है, और यही सुकून हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिन रांची मेलोडीज के जरिए।

आनंद बख्शी का लिखा लता मंगेशकर कर और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आपने जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये मधुर गीत सुना, जिसे संगीत दिया था जतिन ललित ने। रांची मेलोडीज केवल गीतों का संग्रह नहीं, यह एक अनुभव है, यह वह मंच है जहां संगीत मन की थकान को शांति में बदल देता है। यह कार्यक्रम हर उस श्रोता के लिए है जो रेडियो को आज भी अपना सच्चा साथी मानता है।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत जिसे आपने अभी सुना, इसे हमने लिया था फिल्म अंदाज से। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण का। नदीम श्रवण ने धुन तैयार की थी और ये रचना थी समीर की। संगीत की यही विशेषता है कि कुछ ही क्षणों में यह मन को हल्का कर देता है, और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, संगीत के माध्यम से आपके दिन को बेहतर बनाना। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सरबजीत फिल्म से ये मधुर संगीत। तर्ज बनाया है अमाल मलिक ने और ये रचना है रश्मि विराग की।

आइए अब सुनते हैं ये भावनात्मक गीत जो आपकी यादों को ताज़ा कर देगा। तो ये गाना है फिल्म एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। धुन है अमाल मलिक के और कुमार ने इस गाने को लिखा है।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता प्रशासन पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: टिक्रम बाल सभा, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: कैसे हैं बच्चों? आपके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि आप एकदम ठीक हैं। और गर्मी की छुट्टी यानी इन दिनों का आनंद मम्मी के हाथों तरह तरह के बनाए भोजन खाकर और दोस्तों संग खूब खेलकर उठा रहे होंगे,
1: और बीच बीच में कहीं घूमने जाकर भी, या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर, दोस्तों के यहाँ, उनके जन्मदिन जैसे पार्टी में जाकर तरह तरह के व्यंजन खाकर खूब लुत्फ उठा रहे होंगे।
0: बच्चों, यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पार्टियों या कभी कभी घर में भी कुछ लोग अपनी भूख से ज्यादा भोजन थाली में ले लेते हैं और पूरा भोजन नहीं खा पाते।
1: ऐसे में थाली में बचा खाना कूड़े के डब्बे में फेंकना पड़ जाता है, जो कि भोजन की बर्बादी है। बच्चों, जानते हैं बच्चों, हमारी आपकी यानी सभी की थाली में भोजन कई लोगों की कड़ी मेहनत से आता है और इसे कभी भी फेंकना या बर्बाद नहीं करना चाहिए।
0: हम सबकी थाली तक अन्न पहुँचे, इसके लिए हमारे किसान भाई बहन खेत में तेज धूप, बारिश, ठंड सब मौसम को सहते हुए कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं।
1: और इतना ही नहीं बच्चों, घर में लाने के बाद भी उसको मम्मी परिश्रम से साफ सुथरा करती हैं और फिर उसको पकाती हैं और तब आपको प्रेम के साथ थाली में परोसती हैं, है ना?
0: हाँ बच्चों, इतने सारे लोगों के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही भोजन हम सभी लोगों तक पहुंच पाता है। यदि हम उसे जरूरत से ज्यादा लेकर फेंक देते या खाना थाली में छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ खाना या अन्न का अपमान करते हैं बल्कि उसके साथ ही उन संसाधनों का भी अपमान करते हैं जो उसको तैयार करने में लगे होते हैं। जानते हैं बच्चों, दुनिया भर में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता और मजबूरी में उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है।
1: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि अपनी थाली के भोजन को बर्बाद नहीं होने दें, यानी भोजन उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। और बच्चों, हम आपको बता दें कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और इस खास दिन पर आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद भोजन बर्बाद नहीं करेंगे, थाली में खाना नहीं छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब बच्चों को हम क्या बताने जा रहे हैं?
0: भैया, अब हम बच्चों को बताने जा रहे हैं छुट्टियों में सीखे नई नई कलाएं, क्योंकि छुट्टियों का दिन आया है, बच्चों के मन को भाया है, अभी ना वे पढ़ने जाएंगे, अपने अंदर की कला को अब तो बाहर लाएंगे।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी कि अपने भीतर की कला को बाहर दिखाने और सीखने का ये खास समय होता है।
0: बच्चों, जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि आप लोगों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, सवेरे सवेरे जगने और स्कूल जाने की चिंता इस समय तो बिल्कुल नहीं होगी आपको।
1: ऐसे में आप अपने इस सुनहरे खुशनुमा दिन का उपयोग खेलने के साथ साथ बच्चों एक और अच्छे काम के लिए आप कर सकते हैं, और वो काम है नई कलाओं को सीखने का।
0: हाँ बच्चों, इस गर्मी की छुट्टी में आप अपनी पसंद के काम, जैसे कि आपको गाने में रुचि है तो संगीत का प्रशिक्षण ले सकते हैं, गायन सीख सकते हैं, किसी को नृत्य में रुचि है तो वे किसी प्रशिक्षक से नृत्य का प्रशिक्षण ले सकते हैं, यदि आपको कविता या कहानी बहुत पसंद है तो उसे भी आप लिख सकते हैं, यदि चित्रकला सीखना और बनाना चाहते हैं तो उसे सीखकर उसमें अपनी कल्पना से सजा सवार सकते हैं।
1: इतना ही नहीं बच्चों, ओरिगामी और क्राफ्ट से अपनी कला को ऊंची उड़ान दे सकते हैं।
0: अगर कुकिंग में मन लगता है आपका बच्चों तो मम्मी से आसान रेसिपी सीखकर कुछ कुछ चीजें भी बना सकते हैं आप, जैसे कि सैंडविच, मैंगो शेक वगैरह। नई चीजों को सीखने और अंदर की प्रतिभा को निखारने से आपका दिमाग और तेज होगा, आप अपने दोस्तों के बीच जीनियस कहलाएंगे।
1: तो आलस को कहो बाय बाय टाटा और आज ही अपनी हॉबी रुचि के अनुसार अपने काम में लग जाइए, नई नई कलाएं सीखिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही वो समय है कुछ नया करने का और अपने अंदर के छुपे हुए सुपर कलाकार को बाहर निकालने का, जो देगा आपको एक अलग पहचान और आपके सपनों को खूबसूरत पंख। तो चलिए बच्चों, बातें तो होती रहेंगी लेकिन अब थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, और मनोरंजन हम आपको करवाते हैं एक बाल गीत सुनाकर।
2: लकड़ी

0: बालगीत तो भैया आपने बहुत अच्छा सुनवाया बच्चों को।
1: तो अब बच्चे भी तैयार हैं दीदी को सुनाने के लिए। तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: आपका नाम क्या है और क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
3: मेरा नाम शिवांश भारद्वाज है। मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक मजेदार कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है होमवर्क। होमवर्क आया झूम झाम, बोला कर लो मेरा काम। मैंने कहा जरा ठहरो भाई, पहले खेलू फिर पढ़ाई। पेंसिल बोली मुझे चलाओ, नोटबुक बोला मुझे सजाओ, इरेजर बोला गलती मिटाओ, सब मिलकर मुझको समझाए। मैंने सोचा बात है सच्ची, आदत होनी चाहिए अच्छी। बैग से अपनी पुस्तक निकाली, खुल गई ज्ञान की सुंदर हरियाली। गणित के प्रश्न बड़े थे न्यारे, कुछ आसान कुछ थे भारी। हिंदी की कविता गुनगुनाई, अंग्रेजी की स्पेलिंग दोहराई। कभी कभी मन थोड़ा घबराता, खेल का मैदान याद दिलाता। फिर मम्मी प्यार से समझाती कि मेहनत करके ही आगे जाते। पढ़ाई और खेल का होता मेल, यही सफलता की सच्ची रेस। रोज समय पर काम करूंगा, आलस से दूर रहूंगा। धन्यवाद।
2: वाह, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम माही पांडे है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ रही हूँ। आज मैं एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसे सूरज आता है। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलिया प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती नहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चढ़ता है, ऐसे सूरज ढलता है। धन्यवाद।
2: बहुत

0: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और आप क्या सुनाएंगे? पहले अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार, मैं नव्या गुप्ता आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई। यह कविता मुझे बेहद पसंद है। जब मैं दुखी या हताश होती हूँ तो इस कविता को अवश्य सुनती हूँ। यह कविता मुझे एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह कविता हमें आगे बढ़ते रहने और जीवन की अस्थिरता को अपनाने का एक सशक्त संदेश देती है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो माद कता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई।
0: जो बीत गई सो बात गई। वाह, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम जनिशा मिश्रा है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी बारी आएगी। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आँखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगी हाँ, आज मेरी बारी है। धन्यवाद।
0: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
3: बिल्कुल।
0: तो चलिए बच्चों को कुछ और जानकारी दे दी जाए।
3: बिल्कुल। धरती हमारी सबसे न्यारी, इसमें बसती है दुनिया सारी। इसकी छटा है बड़ी निराली, चारों ओर फैली है हरियाली। सबसे सुंदर सबसे प्यारी, रंग रंगीली धरा हमारी। इससे ही जुड़ती है जीवों की खुशहाली, देती हम सबको ये खुशियाँ सारी।
0: वाह दीदी वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कविता के माध्यम से। और आपने जो बताया कि हमारी धरती सभी प्राणियों को ढेर सारी खुशियाँ देती है। जानते हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी यानी धरती को अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
3: दरअसल इसके 71% हिस्से पर महासागर फैले हुए हैं। ये महासागर हमारी धरती के दिल के रूप में हैं, जो धरती को जीवन दायिनी बनाने में सहायता करते हैं। बच्चों,
0: लेकिन बच्चों, आज ही महासागर हम इंसानों की गलत गतिविधियों के चलते गहरे संकट में आने लगे हैं।
3: यदि हमें अपनी धरा यानी नीले ग्रह को बचाना है, तो सबसे पहले अपने महासागरों की सुरक्षा करनी होगी। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम यदि छोटे छोटे प्रयास करें, तो एक बड़ी सफलता महासागर को बचाने के रूप में हमें मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं इन छोटे छोटे कदमों के बारे में।
0: सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जहाँ तक संभव हो सके बच्चों, उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए।
3: प्लास्टिक वाले कचरों तथा अन्य कचरा नदियों समुद्रों में नहीं फेंकना चाहिए।
0: महासागर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं बच्चों, इसलिए उनका पानी अम्लीय होता है जो समुद्री जीवों को हानि पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम हो इसके लिए छोटी या कम दूरी के लिए साइकिल अथवा पैदल चलना चाहिए, जो ऊर्जा की भी बचत करेगा।
3: तो बच्चों इस तरह से

0: छोटे हमारे प्रयासों से महासागरों का प्रदूषण कम होगा, जिससे इस धरती को सुरक्षा मिलेगी। तो हम सब मिलकर करें प्रण की कल यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस पर लेंगे ये संकल्प कि छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे, कपड़े और जूट के थैले से काम हम चलाएंगे।
1: नदियाँ, समुद्र, पहाड़ हमारे, इसमें ना कभी कचरा फैलाएंगे, व्यर्थ पानी ना गवाएंगे, थोड़ी दूरी के लिए पैदल ही हम चलकर जाएंगे, करेंगे सुरक्षा महासागरों की, हम खुद सुरक्षित हो जाएंगे।
2: तो बच्चों, अभी आपने जाना कि महासागरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इन महासागरों को बचाने का दायित्व भी हमारा है।
1: बच्चों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगती है और इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू, है ना? जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप या अत्यधिक गर्मी में रहता है तो वो इससे बीमार पड़ सकता है। लू लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करने लगता है।
0: बच्चों, लू लगने के लक्षण है तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, बहुत अधिक प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना। लू से बचने के लिए जानते हैं बच्चों क्या उपाय करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: और बच्चों, दोपहर 12 बजे से, और हम तो ये कहते हैं कि अभी तेज गर्मी है तो दोपहर नहीं 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक धूप सबसे तेज होती है और इस समय बाहर खेलने या घूमने से बचना चाहिए। बच्चों, हल्के और सूती कपड़े पहनना चाहिए, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाँ, एक बात और है, अगर आपको बाहर निकलने की जरूरत ही पड़ जाए तो बाहर निकलते समय टोपी जरूर पहने, छाता लगाएं या गमछे का उपयोग करें।
0: बच्चों, गर्मी के मौसम में पौष्टिक और हल्का भोजन भी करना चाहिए। गर्मी में ताजे फल, सलाद, दही, छाछ और घर का बना हल्का भोजन खाना चाहिए। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करिए, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम और नारियल का पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इसको जरूर खाना और पीना चाहिए।
1: हाँ बच्चों, और यदि किसी को लू लग ही जाए तो क्या करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं, नींबू पानी दें या ORS का घोल या छाछ पिलाएं। शरीर को गीले कपड़े से पोछें, यदि हालत गंभीर लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो बच्चों, गर्मी का मौसम मजेदार तो हो सकता है लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।
1: और इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर बच्चों हम गर्मियों में स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लू से बचने के उपाय तो आप जान गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने दोस्तों को इन जानकारियों से अवगत कराएंगे। और अब दीदी, अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए, तो बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं एक बाल कहानी और कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी।
0: उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। बच्चों,
1: पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर सा कुत्ता था और कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौं भौं कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था।
0: एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत उसे आन पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे?
1: लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा।
0: सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में रख दो मेरे पास, जब तुम हमारे सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा।
1: बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से नौ दोई कारा हो गए।
0: कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा।
1: इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वो सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्तों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो नाराज हो गया। सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान नहीं रखी, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ न देखा ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है।
0: लाखा तो चकित ही हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है।
1: तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब दीदी, हम हर हफ्ते किसी न किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, तो आज के जो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं,
0: महान स्वाधीनता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा,
1: जिनको हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, जननायक और आदिवासी समाज के गौरव थे बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। हर वर्ष 9 जून को उनका बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है।
0: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। बचपन से ही बिरसा अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और साहसी थे।
1: बच्चों, बिरसा को बचपन में भेड़ बकरी चराने का काम दिया जाता था। जब उन्हें भेड़ बकरी चराने के लिए कहा जाता था तो वे उन्हें छोड़कर पेड़ की किसी शाखा पर बैठकर बांसुरी बजाने लग जाते थे। इन सब से परेशान होकर माता पिता ने बिरसा को उनके मामा के गांव में भेज दिया, जहां से बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी हुई। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे। बच्चों, पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें आगे पढ़ने की हिदायत दी। वो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की सलाह उन्होंने दिया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो वापस फिर अपने गांव लौट आए।
0: उस समय आदिवासी समाज अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से पीड़ित था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे और उन्हें जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। बिरसा ने इन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को देखा और इसके विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया।
1: बच्चों, युवा अवस्था में उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बिरसा का मानना था

0: समाज की उन्नति शिक्षा एकता और आत्मविश्वास से ही संभव है। उन्होंने लोगों को नशाखोरी अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। लोग उन्हें धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहकर भी पुकारते थे।
1: बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया उसे उल गुलान अर्थात महान जन क्रांति कहा जाता है।
0: सन 1899 और 1900 के दौरान उल गुलान आंदोलन अपने चरम पर था बच्चों, और बिरसा और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी। इस आंदोलन से अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया और अंत में 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
1: गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया, लेकिन ऐसा भी मत है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। इतने कम जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए वे उन्हें अमर बना गए। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए उनके जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
0: बच्चों, उन्होंने अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 9 जून बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी को शहीद बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प करना चाहिए। बच्चों, भारतवर्ष सदैव इस महान क्रांतिकारी पुत्र का ऋणी रहेगा। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है।
1: चलते चलते हम आपको बता दें बच्चों कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी।
0: तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद बच्चों।
3: कार्यक्रम बाल सभा यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी कराची केंद्र है। आइए अब हम आपको हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। इस कार्यक्रम विवरण के बाद हम हाजिर होंगे फिल्मी संगीत के साथ। कार्यक्रम सांझ सरगम के अंतर्गत 5:02 पर आप सुनेंगे युवाने, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। साथ ही साथ आप जानकारी लेंगे खाद्य सुरक्षा और भारत अन्नपूर्णा योजना के विषय में। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोग का समय आपको पता है 5:30 पर। आज हम जानकारी लेंगे हर थाली में पोषण, हर घर में भोजन, खाद्य सुरक्षा का असली महत्व, सत्याग्रह का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 जून 1893। कंपेयर होंगे सुषमा एका और आशीष कश्यप और प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। शाम को 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर वक्त होगा खेती बाड़ी का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा एकीकृत कीट प्रबंधन। और साथ ही साथ हम जानकारी लेंगे गर्मा मूंग फसल की देखरेख के विषय में। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भेंटकर्ता एवं प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। कार्यक्रम हमारी दुनिया का समय होगा 6:32 और आज आप जानेंगे समय को व्यर्थ न गवाई के विषय में। और खुरठा वार्ता में हम जानकारी लेंगे जलवायु परिवर्तन के विषय में। वार्ताकार होंगे अजय कुमार दास और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। जिले में आजकल का वक्त आपको पता ही होगा दोस्तों 7:11 और 7:15 पर आप सुनेंगे हमारे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। कविताएं होंगी सदानंद सिंह यादव की और कहानी रीता गुप्ता की। प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रशांत कौरव की। संथाली समाचार पत्रिका का समय होगा 7:45 और फिल्म संगीत का वक्त होगा रात 8 बजे। हमारा विषय कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण आप सुन सकेंगे 8:10 पर और 8:45

से क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और 9:30 पर वक्त होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आप सुनेंगे 9:30 पर। और रात के 10 से वक्त होगा रविवासीय अखिल भारतीय संगीत सभा का। आज आप सुनेंगे विशाखापट्टनम के टॉप श्रेणी के कलाकार विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटक गायन। और रात्रि 11 से क्रमशः आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर वीडियम वेब पर हमारी सभा यहीं समाप्त होगी। ये थे आज हमारी तीसरी सभा में प्रस्तुत होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। और अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ।

यह आकाशवाणी कराची केंद्र है और मैं आपकी रेडियो हम सफ़ेर सफ़र मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सांझ सरगम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं एक से एक सुपरहिट नगमे। क्या खूब कहा है किसी ने कि जिंदगी बदलती रहती है और हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का हल भी होता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा ये ज़रूर कहें कि ज़िंदगी, आई लव यू।

जिंदगी की राहों में थोड़ी मुश्किलें होती हैं और कहाँ हर किसी की चाहते पूरी होती हैं। आप भी कभी अपनी जिंदगी से दोस्ती करके तो देखिए, जिंदगी का नाम दोस्ती भी तो है।

दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है और इसे हर पल जीकर खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच में कल का भरोसा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करो और हो सके तो ज़िंदगी से कम नाराज़ भी रहो।

ज़िंदगी के सवालों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी चुनौतियों और सपनों का संगम है, जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमें खुद पर विश्वास कराता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार के साथ।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भाजपा के कमल को राज्य में मजबूत करेगा। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेंगे भी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे से संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी काफी ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। आज पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBA और BBA पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। MBA के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा BBA के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। जापान के काका मीगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से पराजित किया। इस जीत में जमशेदपुर की नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोए का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में स्वागत है। लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हैं ढेर सारी जानकारियों के साथ। मैं निकिता
1: और मैं श्रेया।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आशा करते हैं कि सभी युवा साथी जरूर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो श्रेया, अब हम जानकारियों का पिटारा खोलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी साझा करते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम

0: सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम सभी रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित और साफ है? अगर हमारा भोजन साफ और सुरक्षित नहीं होगा तो इसका सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ेगा। इसीलिए हर साल 7 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।
0: दोस्तों, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। अच्छा और सुरक्षित भोजन हमें ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन अगर खाना गंदा, बासी या गलत तरीके से बनाया गया हो तो वही भोजन बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, फूड सेफ्टी का मतलब है भोजन को साफ, सुरक्षित और सही तरीके से तैयार करना और खाना। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल श्रेया, जैसे खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना, फल और सब्जियों को साफ पानी से धोना, बासी खाना खाने से बचना और हमेशा ढक कर रखा हुआ भोजन ही खाना।
1: हाँ दोस्तों, गर्मियों और बारिश के मौसम में खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए इन दिनों बाहर का खुला खाना खाने से बचना चाहिए। साफ पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बीमारियां गंदे पानी और असुरक्षित भोजन की वजह से भी फैलती है।
0: घर में खाना बनाते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रसोई साफ होनी चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, खाना हमेशा ताज़ा बनाना चाहिए। छोटी छोटी सावधानियाँ हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं।
1: हाँ, और बच्चों को भी शुरू से साफ और सुरक्षित भोजन की आदत सीखनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि ज़्यादा जंक फूड खाना नुकसानदायक हो सकता है, घर का पौष्टिक खाना ही सबसे अच्छा खाना होता है।
0: हाँ, और आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने की शुरुआत हमारे भोजन से ही होती है। अगर हमारा खाना सुरक्षित होगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमें यही संदेश देता है कि हम सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि हम जान रहे हैं और हमने बात की कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो इस बार की जो थीम है यानी कि 2026 का जो थीम है वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। वो कहते हैं ना, सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन, इसी कहावत को सुनते हुए आइए हम जानते हैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और हमें मोटिवेट करती है सुरक्षित भोजन खान पान के प्रति।
1: बिल्कुल दोस्तों, सरकार हमें ऐसे कई स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं जहां सबको सेफ एंड सिक्योर्ड फूड के ऑप्शंस मिले, और उनमें से सबसे मुख्य है अन्नपूर्णा योजना, जो ज़रूरतमंदों के लिए, जिसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, उन्हें प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रोवाइड करती है, जिससे उनके महीने भर के सुरक्षित भोजन का भी साधन बन सके।
0: भोजन एक स्वस्थ शरीर और पॉजिटिव माइंड के लिए टॉप कंट्रीब्यूटर में से एक है। अगर हम भूखे हैं और किसी एक्टिविटी में इंगेज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों अलाउ नहीं करता। ऐसे में स्वस्थ और साफ खान पान आपके जीवन में और आपके लिए एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है।
1: बिल्कुल, अन्नपूर्णा योजना इसी को बढ़ावा देते हुए हमें ग्राउंड लेवल तक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाती है।
0: तो दोस्तों, ये तो बात हो गई वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में, पर जैसा कि हम जानते हैं आज है संडे, और संडे का दिन अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर आता है। पूरा हफ्ता काम और भाग दौड़ में निकल जाता है और फिर आता है रविवार, जहां मन चाहता है थोड़ा आराम हो, थोड़ी मुस्कान हो और साथ हो कुछ मधुर गीतों का।
1: तो दोस्तों, आज इस सुहाने रविवार आइए कुछ खूबसूरत गीतों का आनंद लेते हैं हमारे खास सेगमेंट गीतों भरी कहानी के साथ।
0: दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल से जुड़े होते हैं, उनकी धुन, उनके बोल और उनसे जुड़ी यादें। आज हमारे गीत भी कुछ ऐसे ही हैं, मीठी यादों से भरे हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ, जिसका नाम है आओ ना।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत क्यों हो गया ना फिल्म से लिया गया है। इस गाने को अपनी मधुर आवाज दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लोय ने, और इसके बोल इतने प्यारे हैं कि सीधा दिल में उतर जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर, जो है एक दिन आप यूं।

0: दोस्तों, फिल्म यस बॉस का यह बेहद लोकप्रिय गीत आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ दी थी कुमार सानू ने और अलका याग्निक जी ने। संगीत था जतिन ललित का। इसके बोल सुनते ही दिल में एक अलग मिठास घुल जाती है।
1: दोस्तों, संगीत सच में अपने साथ कुछ यादें और भावनाएं लेकर आता है। और अब समय है आज के हमारे आखिरी गीत का, एक ऐसा गीत जिसने युवाओं के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई और अपने संगीत से हर किसी के मन को खुश कर दिया।
0: फिल्म एक दीवाना था का यह बेहद खूबसूरत गीत अपनी अलग धुन और अंदाज के लिए जाना जाता है। इस गीत को आवाज़ दी है लियोन डिसूजा, ब्लेज और सुजैन डिमेलो ने। संगीत दिया है मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने। तो चलिए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों सच ही कहते हैं कि गीत की धुन सुनते ही मन एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। और दोस्तों हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और कार्यक्रम के शुरुआत में ही जैसे हमने जाना कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, तो आइए अब जानते हैं कि भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती किसान किस प्रकार देते हैं।
1: दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ उगाते हैं जिससे करोड़ों लोगों की थाली तक भोजन पहुँचता है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा का अर्थ बस भोजन की उपलब्धता नहीं बल्कि ऐसा भोजन उपलब्ध होना है जो सुरक्षित, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हो। इस दिशा में किसान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, आज हमारे किसान मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग को अपना

0: बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार भी किसानों के सहयोग के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें फसल बीमा योजना, कृषि तकनीकी सहायता शामिल है। इन प्रयासों से किसानों को प्रोत्साहन मिलता है और खाद्य सुरक्षा और बेहतर बनती है।
1: दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये संदेश देता है कि सुरक्षित भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने में किसान सबसे महत्वपूर्ण है। आइए इस अवसर पर हम किसान के मेहनत को सम्मान करें और खाद्य पदार्थ के सुरक्षित उपयोग का संकल्प लें।
0: दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है, तो दीजिए आपकी दोस्त निकिता
1: और श्रेया
0: को इजाज़त।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार जोहार। श्रम, समर्पण और संघर्ष की प्रेरणादायक दुनिया से जुड़े आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी श्रमिक श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आपकी मेहनत ही देश के विकास की असली ताकत है। मैं हूँ सुषमा, आज के कार्यक्रम की हमसफर, और मेरे साथ है आशीष। तुम्हें भी नमस्कार।
1: नमस्कार सुषमा, और तमाम मेहनत कश श्रमिक मित्रों को आशीष का भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, हर दिन नई उम्मीद, नया उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि मेहनत की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपने कौशल को निखारें और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें।
1: और इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। साथियों, खाद्य सुरक्षा का असली महत्व तो तब होगा जब हर थाली में पोषण और हर घर में भोजन उपलब्ध होगा।
0: बिल्कुल सही बात कही आशीष आपने। और साथियों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव है। एक श्रमिक की सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य की शुरुआत पौष्टिक भोजन से होती है। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जब भोजन संतुलित और पोषण युक्त होता है तब शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है।
1: बहुत सही कहा सुषमा आपने। और खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। आज सरकार द्वारा राशन व्यवस्था, पोषण अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
0: हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भोजन केवल अधिकार नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की आधारशिला है। इसलिए श्रमिक भाई बहनों को अपने भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध तथा पर्याप्त पानी को शामिल करना चाहिए। छोटे छोटे पोषण

0: भी कदम परिवार के स्वास्थ्य को बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: और विश्व खाद्य दिवस हमें यह संदेश देता है कि भोजन की बर्बादी रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें और अन्य का सम्मान करें। जैसा कि सुषमा, एक प्रसिद्ध कहावत है, अन्न का एक एक दाना किसान की मेहनत और प्रकृति का उपहार है।
0: बिल्कुल सही बात। तो साथियों, इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि अपने परिवार और समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे, भोजन की बर्बादी रोकेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान जरूर देंगे। और आशीष, जब हम इतनी बातें खाद्य सुरक्षा पर कर रहे हैं, तो एक बात मुझे बड़ी खलती है कि जब भी सब्जी बनाओ ना, तो बच्चे कहते हैं कि चूजी हो जाते हैं, मुझे ये सब्जी नहीं खाना, ये सब्जी नहीं खाना। तो जबकि हर सब्जियों का, फलों का अपना पोषण तत्व जो गुण होते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और तभी मेरी माँ प्रोग्राम सुनती होंगी तो कहती होंगी कि हाँ बेटा, अभी तुम बोल तो जरूर रहे हो, पर अगर नेनुआ बना दूं, टुंडी बना दूं, तो तेरे भी मुंह बन जाते हैं। लेकिन बड़े होकर मुझे समझ में आया कि सभी पौष्टिक पोषण हरेक सब्जियों में अपने अपने गुण होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सभी अपने अपने गुण लेकर ही आते हैं। और हमें सभी सब्जियों को, सभी मौसमी सब्जियों को खाना चाहिए और बच्चों को विशेषकर खिलाना भी चाहिए। और इसे और अधिक बेहतर तरीके से समझते हैं ना इस गीत से।
1: बिल्कुल।

0: वाह सुषमा, आपने तो बड़ा ही अच्छा ये गाना सुनवाया।
1: हम गाने से जल्दी समझ में आते हैं बच्चों
0: अच्छा
1: को, बिल्कुल। तो साथियों, हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा में बात कही थी कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि हर परिवार के विश्वास और बेहतर भविष्य का आधार है। खेत से लेकर हमारी थाली तक भोजन की शुद्धता और गुणवत्ता निश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: तो आइए सुनते हैं ये विशेष वार्ता। विषय है खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य, खेत से हर थाली तक शुद्धता का संकल्प। वार्ताकार हैं राजश्री सिंह।
2: नमस्कार, आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसा संकल्प की जो हमारी थाली से जुड़ा है और हमारी सेहत से भी। विषय है खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य, खेत से हर एक थाली तक शुद्धता का संकल्प। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद 2019 से प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। यह विषय केवल भोजन से जुड़ा नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य से भी जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य, खेत से हर एक थाली तक हम सुनिश्चित करते हैं कि हर अनाज, फल और सब्जी पौष्टिक और सुरक्षित हो। इसका अर्थ यह होता है भोजन के उत्पादन से लेकर उसके उपभोग तक हर एक चरण में शुद्धता हो, यानी कि कृषि उत्पादन, भंडारण और परिवहन और हमारा रसोई तक शुद्ध हो, क्योंकि पोषण ही हमारी असली ताकत है और यही मजबूत और स्वस्थ जीवन शैली है। जैसा अन्न वैसा मन, यह सनातन कहावत आज के आधुनिक युग में और भी प्रासंगिक हो गई है। यानी खेत से हमारी रसोई तक की यात्रा सुरक्षित, स्वस्थ और शुद्धता से परिपूर्ण हो। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। हम जो भोजन करते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है। अन्न शुद्ध तो हमारा मन भी शुद्ध। जो भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है वह स्वच्छ, सुरक्षित, मिलावट रहित और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। कृषि शुद्धता और सुरक्षा का प्रथम चरण है। आज की सबसे बड़ी चुनौती फसलों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग। रासायनिक उर्वरक के कारण हमारा खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ सकता है और हमारे खेत बंजर हो सकते हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती से हमारी फसलें शुद्ध सुरक्षित रहती है। किसानों को चाहिए कि वे रासायनिक खेतों से प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ें, ताकि फसलों का उपज पौष्टिकता और शुद्धता पूर्ण हो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाले गीत को चिरता करने की जरूरत है। दूसरा चरण हमारा भंडारण और परिवहन है। फसल कटने के बाद रसोई तक पहुंचने के बीच का सफर बहुत संवेदनशील होता है। भारत जैसे विकासशील देश में रख रखाव की कमियों के कारण भारी मात्रा में अनाज और सब्जियां गायब हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं या दूषित हो जाती है। अगर भंडारण गलत हुआ तो कीड़े और फंगस लग जाएंगे। अनाज को नमी, फंगस और कीटों से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ गोदाम भरना नहीं, असली सुरक्षा फलों सब्जियों को मंडियों और बाजारों तक सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन को ध्यान में रखकर पहुंचाना, ताकि उन पर बैक्टीरिया न पनपे। हमारी रसोई और थाली, यह हमारा तीसरा और अंतिम चरण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकती है। भोजन पकाने और खाने से पहले हाथों को और उपयोग में आने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सब्जियों और फलों को उपयोग करने से पहले साफ पानी या हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए, ताकि ऊपरी सतह के कीटाणु नष्ट हो जाएं। पके हुए भोजन और कच्चे खाद्य पदार्थ को अलग अलग रखना चाहिए। आज खाद्य मिलावट एक गंभीर समस्या बन चुकी

0: की है। दूध में पानी, मसालों में रंग, फल और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाना, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन देना, इंजेक्शन से फलों और सब्जियों को पकाना और आकार में बड़ा करना, यह सब अप्राकृतिक रूप से उत्पादन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व फूड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा कारण है। पेट दर्द, एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जनक है। आपको पता ही होगा पुणे में तरबूज की घटना, जिसमें एक एक ही परिवार के चार लोग जानलेवा हो गया। सरकार भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक नियम और कानून लागू करती है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाती है और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसानों को जागरूक होकर टिकाऊ और सुरक्षित पद्धतियों को अपनाना होगा। सरकारों और नियामकों खाद्य मानकों और कानूनों को कड़ाई से लागू करना होगा। उपभोक्ता के रूप में हमें एक्सपायरी डेट, ट्रेडमार्क देखना, पैकेजिंग डेट व गुणवत्ता देखना होगा। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा स्वच्छ सुरक्षित भोजन का उपयोग करें, खाद्य पदार्थों में मिलावट का विरोध करें, भोजन की बर्बादी को रोकें, बच्चों को किचन गार्डन से जोड़ें, फूड वेस्ट को कंपोस्ट बनाएं, हर हफ्ते जीरो वेस्ट थाली का नियम बनाएं, पौष्टिक और संतुलित आहार को अपनाएं, अपने परिवार और समाज को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। जब किसान सुरक्षित उत्पादन करेगा, व्यापारी ईमानदारी से खाद्य पदार्थ बेचेगा और उपभोक्ता जागरूक रहेगा, तभी हर व्यक्ति तक सुरक्षित भोजन पहुंच सकेगा। याद रखिए, सुरक्षा टेबल पर बनते हैं, लेकिन उसकी नींव खेत में पड़ती है। खाद्य सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। स्वस्थ समाज का निर्माण स्वस्थ नागरिकों से होता है और स्वस्थ नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन आवश्यक है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पौष्टिक और सुरक्षित भोजन और भी अति महत्वपूर्ण है। यदि हम खाद्य सुरक्षा के प्रति सजग रहेंगे तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि हर एक थाली तक शुद्धता का संकल्प केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित भोजन और पौष्टिक भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि हम सभी मिलकर इस दिशा में कार्य करें तो हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह किसी व्यक्ति, किसान या सरकार के अकेले प्रयास से पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए एक मजबूत टीम की आवश्यकता है। तो आइए खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य, खेत से हर एक थाली तक शुद्धता का संकल्प के पहल में हम सब अग्रसर हों।
1: खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य, खेत से हर थाली तक शुद्धता का संकल्प। आशा है इस वार्ता से आपको सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के महत्व को समझने में सहायता जरूर मिली होगी।
2: बिल्कुल। और भोजन, पोषण और स्वास्थ्य चर्चा के बीच आज हम उस ऐतिहासिक घटना को भी याद करेंगे साथियों, जिसने दुनिया को अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का नया रास्ता दिखाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह का जन्म यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की।
1: और साथियों, 7 जून 1893 का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। दक्षिण अफ्रीका में एक युवा भारतीय वकील मोहनदास करमचंद गांधी को केवल रंग भेद के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से उतार दिया गया। इस अपमान ने गांधी जी को झुकाया नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। यहीं से सत्य, अहिंसा और आत्मबल पर आधारित संघर्ष की नींव पड़ी, जिसे आगे चलकर सत्याग्रह कहा गया।
2: गांधी जी का विश्वास था सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और अहिंसा इसका सबसे प्रभावी साधन। श्रमिक साथियों, सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने का संदेश था। इसने दुनिया को सिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, उनका कहना था कि आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आज जब हम अपने अधिकार

0: अधिकारों, सम्मान और बेहतर जीवन की बात करते हैं ना, तब गांधी जी का सत्याग्रह हमें संयम, साहस और एकता का मार्ग दिखाता है। 7 जून 1893 की वह घटना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, बल्कि एक ऐसे विचार का जन्म था जिसने पूरी दुनिया का को न्याय और समानता का संदेश दिया। और अब आइए जानते हैं कि हम नशे से दूर रहकर हम अपने परिवार और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यानी नशा मुक्त जीवन, खुशहाल हर आंगन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुषमा। और साथियों, जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुखी परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन नशे की लत आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य तीनों को प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल, नशा चाहे किसी भी रूप में हो या धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम करता है, आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाता है और पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के लिए स्वस्थ रहना और अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। कहा भी जाता है, स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। क्यों?
1: सही बात कहा आपने। और नशे से दूर रहकर व्यक्ति अपने परिवार के जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकता है और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। क्योंकि नशा क्षणिक सुख देता है, लेकिन उसका नुकसान लंबे समय तक साथ रहता है।
0: सही बात है, नशे से दूर रहकर व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकता है और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन भी जी सकता है। क्योंकि नशा क्षणिक सुख देता है, लेकिन उसका नुकसान लंबे समय तक साथ रहता है।
1: इसीलिए नशे को कहें ना, स्वास्थ्य और खुशहाली को कहें हाँ। तो क्यों, कुछ गीत संगीत हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया सुषमा। और मैं आपसे एक बड़ा ही आवश्यक बात करना चाह रहा था।
1: हाँ,
0: मुझे
1: बोलिए।
0: कुछ दिन पहले कुछ लोग बता रहे थे कि वन नेशन वन राशन कार्ड का कुछ प्रावधान हमारे देश में
1: बिल्कुल
0: आ रहा
1: बिल्कुल
0: है और काफी लोग जो है इस प्रक्रियाओं को
1: आ
0: समझना
1: चुका
0: चाह रहे
1: है।
0: हैं, आ चुका है ना, तो मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये राशन कार्ड बनेगा कैसे, या जिनका बना हुआ है क्या उनको फिर से वो प्रक्रियाओं में शामिल होना होगा।
1: ऐसा है ना कि हमारे जो श्रमिक होते हैं ना, अक्सर रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते
0: बिल्कुल
1: हैं, है ना,
0: बिल्कुल।
1: एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, और उनको उस समय वहाँ दूसरे राज्य में राशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी समस्या को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड
0: तो
1: की
0: क्यों
1: जो
0: ना हम
1: योजना है
0: अपने
1: उसको
0: श्रमिक
1: लाया
0: साथियों
1: गया।
0: को और इसको ये बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें। जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें लाखों प्रवासी श्रमिकों के जीवन को आसान बनाया है, जैसा
1: बिल्कुल
0: कि अभी सुषमा
1: बिल्कुल।
0: ने कहा। और वह सुविधा का नाम अभी हमने बताया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रवासी श्रमिकों के लिए PDS की नई ताकत।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही रोजगार की जो तलाश, हमने कहा कि श्रमिक अपने गांव से, राज्य से दूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। पहले ऐसी स्थिति में राशन प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था श्रमिकों को, लेकिन अब जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था ने इस समस्या का समाधान तो समझो खत्म
0: कर ही दिया।
1: कर
0: हाँ,
1: दिया
0: ये तो
1: है
0: बड़ी
1: ना।
0: अच्छी उपलब्धि रही है। और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी देश में कहीं भी जाकर अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी राशन कार्ड का एक राज्य तक सीमित नहीं रहना है ये, बल्कि पूरे देश में उपयोग किया जा सकता है। इससे प्रवासी श्रमिकों को और उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ भी आसानी से मिलता है।
1: बिल्कुल मिलता है, यानी भोजन का अधिकार हर नागरिक का अधिकार है। यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाती है, साथ ही श्रमिकों को नई जगह पर बसने और काम करने में भी सहायता प्रदान करती है।
0: ये आपने सही कहा। और साथियों, वन नेशन वन राशन कार्ड केवल एक योजना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और सुविधा का मजबूत आधार है। जागरूक बने, अपने अधिकार को जानें और योजनाओं का लाभ उठाएं। और मुझे ऐसा लगता है सुषमा कि ये जानकारी हमारे सुनने
1: श्रमिक
0: वाले सभी
1: मित्रों को
0: साथियों को मिल गई
1: बिल्कुल होनी
0: होंगी,
1: चाहिए।
0: और श्रमिक साथियों को तो मिलनी ही चाहिए। और हम सभी की जिम्मेदारी है, और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक प्रेषित करें। क्यों?
1: बिल्कुल। और अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो अपने नजदीकी
0: प्रज्ञा केंद्र है।
1: बिल्कुल प्रज्ञा केंद्र में जाएं और कॉमन सेंटर में जाएं और अपना राशन कार्ड जरूर बनवा लें, ताकि कभी भी

0: इसी के साथ हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने सेवानिवृत्त होने वाले कोयला कर्मियों को समय पर पीएफ और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पहले ही उनके अभिलेखों का सत्यापन और अद्यतन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएमपी पीएफ मुख्यालय ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। खूंटी जिला के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पूर्वी सिंहभूम जिले के रहरगोड़ा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देवघर जिले से पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश को विफल करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी में एक अवैध देशी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। Oh,

0: जोहार
1: जोहार जोहार मोनिका बहिन, कहू का हाल चाल है? बड़ी दिन के बाद भेटाती रहा उससे तो।
0: हाल चाल तो नगदे आहे दी, और नगद होवे भी चाहिए अपन कहू। एकदम
1: हाल चाल हमरो बढ़िए है बहिन, तनी गर्मी से ही बेहाल ही जी। गर्मी गर्मी बढ़ा दिलक है, ओकरे से परेशानी है, लेकिन काम धंधा तो चलते रहे के।
0: सही बात है दी, काल की गर्मी लगा थे, बरखा हुआ थे, लेकिन जाड़ो बुझा थे, लेकिन काम धंधा तो लगले है और करे के है नी।
1: एकदम
0: काल की कौन में काम के करे थी तो समय से करे थी तो बढ़िया रहेला है नी।
1: हाँ हाँ, और गर्मी पड़त है तो का हुलक मोनिका बहिन, हमरे के इकर से निजात पाए के रहेला और सावधानी बरते के रहेला है ना। सावधानी अगर रखब तो हमरे के कुछ से नुकसान नहीं हो सकेला।
0: रोरे नगद बात कह ली दी, और देखो इतना भरखर गर्मी है, लेकिन भी हमरे कर किसान भाई बहन मन अपन खेती बाड़ी कर काम में लगले है दी।
1: एकदम सही बात कहली, बहुत सुपर बात कहली मोनिका बहिन। देखू ने कैले हम गांव बटे जा रही नहीं तो देख ली कि कितना फसल एकदम उपजत है और
0: बारी
1: हरा भरा दिखत है। किसान भाई मन ने पटवन भी करत रहे और बहुत सारा तियन मने तोड़त रहे।
0: सही बात है दी, अभी गांव घर में तो खेती बाड़ी इतना सुंदर लहलहाते दी कि देखते देखते इतना मन रिझ हो जाएगा कि लगे कि खेती बाड़ी करके हम इतना बगरा आमदनी कमाब। और संगे संगे हमरे किसान भाई बहन मन करबो करत है नी।
1: एकदम, लेकिन मोनिका बहन एगो बात देख ली हम कि जहाँ तियन मने तोड़त रहे ना, जहाँ खेत में फसल उपजत है, उस जगह बड़ी कीट मने मंडरा रहे, कीट फतिंगा का तरह के रकम रकम के।
0: सही बात कह ली दी।
1: हाँ, तो ये कीट फतिंगा जो हुएला है ना, और इमने फसल के नजदीक आवेला, तो क्या इकर से हमरे के फसल के कुछ नुकसान भी हुएला?
0: एकदम नुकसान हुआ थे बहन, और देखो इतना बगरा नुकसान हुएला कि हमरे के सावधानी बरते चाहिए। और देख रही बहुत सारा है कि कीट पतंग के दूर करे चलते हमरे मन रासायनिक कर प्रयोग भी करीला, छिड़काव करीला है नी।
1: लेकिन मोनिका बहन रासायनिक के प्रयोग हमरे के कम से कम करे चाहिए।
0: एकदम सुपर कह दी।
1: हाँ, इकर खातिर हमरे के कुछ उपाय, कीट जे हानिकारक कीट है उगर से बचे खातिर कुछ उपाय करे चाहिए। जेकर में है कि हमरे मन के खेत मन में तो नी जाली मन के लगाए चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: हाथ मन से भी पकड़ के और भगाए के उपाय करे चाहिए।
0: हाँ, है
1: देखो मोनिका बहन, कैगो कीट मने तो हमरे के फसल खातिर बहुत लाभकारी भी है ना। तो मन के तो हमरे के राखे के बढ़िया से, और ये मने पर्यावरण के भी सुरक्षा करेला, पर्यावरण खातिर भी बढ़िया मानल जाएला। तो जहाँ तक हो सके रासायनिक चीज के प्रयोग
0: कम से कम प्रयोग करें।
1: एकदम एकदम।
0: और ऐसा कभी गांव घर में ये भी देखे के लिए भेटाला दी, जैसन के फसल लगाती तो पुतला मने पोरा कर पुतला मने बना के बना देती और गड़ देती है नी। इके भी देख के बहुत सारा जैसे कीट पतंगा हो गेल थीन छोटका छोटका
1: चढ़े मने जे होए ले छोट मने।
0: हाँ, दूर या भाग है।
1: हाँ, या जे मूसा मने होए ले जे है ना, चूहा चूहिया मने होए ले से मने दूर भाग ले आदमी है कहीं नहीं जाब हमरे।
0: तो इकर भी हमरे के बहुत बढ़िया साधन भेटा ले और सुविधा भी होवे ले बहन। तो बहन हमरे तो बातचीत करते है रब, लेकिन बेरा सिरे कोनो कार्यक्रम के करब तो बढ़िया रही
1: एकदम। तो कुछ जुगाड़ लाई नहीं बहन?
0: एकदम जुगाड़ करी। आओ हमरे मन नागपुरी लोकगीत सुनीला, देवदास विश्वकर्मा और संगे मन गावल गीत।
2: नारलो मोय बाछा बराद

0: बहुत नगद गीत रहे मोनिका बहन।
1: हाँ, हाँ, जैसे उनकी लौरे का भी हरा भरा देखा थे तो
0: एकदम मनो मनो हरियर हो गलक नहीं। हाँ, गाना सुन के और छोटकी ननदिया कर जी चर्चा रहे उकर में तो ननद के रिश्ता तो कहे के ना के कि हाँ तो बहुत नगद गीत सुनवा ली। और अब हमरे मने एक ठो जानकारी कर ले बती।
1: सही बात है बहन। हाँ, खाली हाँ। रिझरंग कर संगे संगे कोनो में काम के हमरे मन जानकारी करवाब तो बहुत बढ़िया रही। हाँ, है नी।
0: तो चलो ने एक ठो जानकारी करब जेकर में गर्मा मूंग फसल के देखरेख हमरे मने कैसे कर सकी ला। हाँ, है ना। इकर बारे में बतात है विशेषज्ञ है मनोज कुमार सिंह और बातचीत कर है संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी आपने गर्मा मूंग की फसल लगा रखी है, फसल बढ़वार भी ले चुकी है और इस वक्त तक समय की मांग है कि फसल बढ़िया हो पैदावार अच्छी हो इसके लिए कुछ बातें को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें खरपतवार नियंत्रण करना है, सिंचाई का प्रबंधन भी हमें ध्यान रखना है, समय पर निराई गुड़ाई और खाद का भी प्रबंधन और साथ साथ रोग मुक्त हो हमारी फसल, इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए आमंत्रित हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब गर्मा मूंग की फसल खेतों में है तो अभी हमारे किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखे ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और अच्छी आमदनी हो।
3: किसान भाइयों अगर आपने फसल लगा दिया है तो अब ध्यान रखना होगा कि हमें उसकी सिंचाई का प्रबंधन, उसमें खरपतवार नियंत्रण और उसके उर्वरक और साथ ही साथ आप उसमें प्रयास करेंगे कि जो कीट और रोग व्याधियां हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है।
2: जी तो सबसे पहले हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण यदि ज़्यादा हमारे में सब खरपतवार हो जा रहा है तो फसल को नुकसान भी पहुंचता है, उसकी ग्रोथ में भी दिक्कत होती है, तो कैसे हम इस पर नियंत्रण पाएं?
3: किसान भाई जब आप ये मूंग लगा चुके हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है ये मूंग लगाए हैं इसकी निकाई गुड़ाई करना जरूरी है। निकाई गुड़ाई करने के लिए आप जो है खुरपी कुदाल के द्वारा ये दो बार जो है 15 से 20 दिन में और दूसरा जो है निकाई गुड़ाई 30 से 35 दिन में करना होता है। और आजकल तो व्हील हो आ गया है, बढ़िया ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये

0: मैनुअल लेबर कम है, तो वहाँ पे आप जो है दवा का, ये खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेंडीमेथिलिन जो है, ये शुरू में बुवाई के समय प्री इमरजेंस के रूप में आप 1 एकड़ में 1.25 लीटर ये घोल बना करके छिड़काव करेंगे, तो उससे जो है बुवाई के समय इसको करने से खरपतवार जो प्री इमरजेंस हैं, जो खरपतवार आने वाले हैं, रोका जा सकता है। पोस्ट इमरजेंस में क्विजालोफोप, ये इथाइल जो खरपतवार नाशी है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के 15 से 20 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो भी खरपतवार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, हमारा फसल जो है वह बढ़िया ढंग से विकसित हो और उसमें उसको फायदा हो सके कि उसके जगह बढ़िया मिल सकेगा, मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा और वह जो है वहाँ कीट व्याधियाँ आने की संभावना भी खरपतवार पे जो आती हैं वो नहीं आएगा
1: जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, सिंचाई प्रबंधन है वो भी बहुत ज़रूरी है, निराई गुड़ाई काम ध्यान दें, तो सिंचाई कब कब करें?
0: देखिए, गर्मा मूंग में सिंचाई 3 से 4 देना बहुत आवश्यक है। ये कोशिश करना चाहिए कि 12 से 14 दिन पे इसको सिंचाई दिया जाए, जिससे कि आपका पौध का वृद्धि विकास बढ़िया हो सके, क्योंकि ये मुख्य रूप से फूल आने के समय, फली बनते समय, और इसमें बहुत सावधानी रखना चाहिए, उस समय पानी की कमी ना हो। ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना होने पाए, ज़्यादा पानी होने से भी पौध का ये समस्या होता है। अगर भारी बारिश होता है तो आप पानी निकासी का प्रबंध भी बढ़िया ढंग से करें और 12 दिन से 15 दिन के अंतर पर आप सिंचाई देते चलें, जिससे आपका फसल का उत्पादन अच्छा हो पाएगा
1: जी। और साथ साथ डॉक्टर साहब, निराई गुड़ाई भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है गर्मा मूंग की फसल में, तो निराई गुड़ाई के साथ साथ रोग मुक्त हो हमारी फसल, तो किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखें, और यदि बीमारी लग जाती है तो कैसे उसका पहचान करें और उसका निराकरण कैसे करें?
0: किसान भाई, ये इसमें ये कीट की व्याधि समस्या ग्रसित रहता है, तो ऐसे स्थिति में आप इसमें व्हाइट फ्लाई आता है तो कीट में जो है जो पत्तियों पर ये अटैक करता है, तो धीरे धीरे हमारी पत्तियों जो है पीली होने लगती हैं और पीला मोज़ेक के नाम से आगे जाना जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देसी विधि है 5 ml नीम का तेल या करंज का तेल घोल प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसको छिड़काव करें। अगर टंकी में इसको यूज कर रहे हैं 15 लीटर में 75 ml ये नीम का या करंज का तेल रहेगा, उसमें आधा पाउच जो है शैम्पू मिला देंगे, जिससे उस पर चिपक जाए तो उससे रोका जा सकता है। अगर आप जो है ये प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, दवा देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास इमीडा क्लोरोप्रिड 3 लीटर पानी में 1 ml ये जो दवा है इसको घोल बना करके छिड़काव करेंगे, तो आपका ये मोज़ेक वाला प्रॉब्लम जो है तो ये पूरी तरह से रोका जा सकता है। दूसरा जो है उसमें एफिड आने की संभावना होता है, जिसको माहू कह के बोलते हैं, पत्तियों का रस चूस करके इन्हें सिकुड़ जाती हैं। इसको रोकने के लिए थायोमेक्सोसान ये आपको 0.25 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके छिड़काव करें। अगर ये नहीं मिलता है थायोमेक्सोसाम, तो आप इमीडा क्लोरोप्रिड ही आप जो है 17.8 SL का है और इसे जो है 3 लीटर पानी 3 ml को एक 3 लीटर पानी में 1 ml को घोल बना करके छिड़काव करेंगे। आगे इसमें थ्रिप्स भी आने की संभावना रहता है, थ्रिप्स आने पर पत्तियां मुड़ जाती हैं और सिल्वर रंग की दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में आप फिप्रोनिल 5% SC का जो है 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे या इमीडा क्लोरोप्रिड को छिड़काव करेंगे, तो आपका थ्रिप्स भी रुक जाएगा। और लास्ट में आता है कीड़े के रूप में आपका पॉड बोरर जो है फली छेदक कीड़ा जो है, बहुत सावधानी रखना है। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि वहाँ पर इवामेक्टिन बेंजोमेट 5% का SG का आप जो है 4 ग्राम ये 0.4 ग्राम प्रति लीटर, मतलब कि 1 ग्राम को 2.5 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे, तो इससे जो है आप जो है ये अपने जो फली छेदक कीड़ा है उसको बढ़िया ढंग से रोक सकते हैं। और जब रोग की बातें आती हैं तो उसमें भी कुछ सावधानियां रखना चाहिए कि रोग को कैसे रोका जाए, तो उसमें मोज़ेक, पीला मोज़ेक भी आता है और दूसरा जो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है, तो पीला मोज़ेक को रोकने के लिए सावधानी रखना है ट्राईक्लोरोयोर 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना छिड़काव करें या मेटासिस्टाक 1 ml प्रति लीटर घोल बना करके छिड़काव करें, इससे

0: रोका जा सकता है। पाउडर मिल्ड्रू आएगा तो वहाँ पर सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर और या जो है कैरोथिन 1.5 ml प्रति लीटर की दर से इसको घोल बना करके छिड़काव करेंगे, जिससे आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम समस्या ख़त्म हो जाए। सड़न की भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी स्थिति में कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम जो बीज उपचारित कर रहे थे उसी समय इसका उपयोग कर लेना चाहिए। पानी का निकासी अच्छा कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तब वहाँ पर आप जो है बेबिस्टीन का यूज़ 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से करके उसको रोकथाम कर सकते हैं। और कहीं कहीं अगर लीफ स्पॉट आ जाए तो कार्बेंडाजिम एक आप जो है कोशिश करेंगे कार्बेंडाजिम को 1 से लेकर के 2.5 ग्राम के बीच में घोल बना करके प्रति लीटर छिड़काव करके रोक लेंगे
1: जी। और डॉक्टर साहब, हम अपने फसलों में खाद भी दें तो कौन सी खाद दें इसमें और कब दें?
0: खाद की जो बात है तो इसमें खाद में सावधानी ये देना चाहिए कि हम सबको 25-50-25 जो है इसमें उर्वरक की मात्रा देना उचित रहता है। 25-50-25 जो उर्वरक है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तो इसकी जो है समय पर बुआई के समय ही दे देना चाहिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास ये जो है हमें जिस समय बुआई करते हैं उसी समय देना है, और जो शेष नाइट्रोजन अगर रहता है तो बुआई के लगभग 35 दिन के बाद निकाई उकाई ख़त्म हो जाता है तो उसमें शेष मात्रा छिड़काव करके उसको पूरी तरह से प्रयोग करके आप इसको अच्छे ढंग से लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, गर्मा मूंग की फसल में आपने बताया कि खरपतवार किस प्रकार करें, सिंचाई प्रबंधन और बीमारी मुक्त हो हमारी फसल, और क्या करना चाहेंगे सर कि फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, बढ़िया दाना उसमें बने और भरपूर हमें आमदनी प्राप्त हो?
0: उस समय विशेषकर सावधानी तो रोग और कीड़ों को देखना चाहिए और उसमें पोषक तत्व जो है आप कोशिश करेंगे, शुरू में अगर आपको लगेगा कि ये एसिडिक सॉइल है तो वहाँ 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना शुरुआत में दे देना चाहिए बुआई के 30 दिन पहले, और उर्वरक जो है 25-50-25 नाइट्रोजन 50 फास्फोरस 25 पोटास और 20 कभी कभी सल्फर भी दे लेते हैं। इस तरह से हम ये उर्वरक को दें। और अगर आपका ज़मीन ठीक नहीं है तो वहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास गोबर खाद है तो 5 टन जो है आप गोबर की खाद को भी ले आना चाहिए जिससे हमारे पौधे का वृद्धि विकास अच्छा हो। अगर नहीं दे पाए हैं तो ये ध्यान में रखें कि हम 1919-19 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। और हमारे पास जो आजकल दूसरा जो उर्वरक आ गया है 0050 का, अब पोटास देना चाहिए जिस समय फली लग रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोल बना करके छिड़काव करें
1: जी। तो किसान साथियों, इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो गर्मा मूंग की फसल की पैदावार बड़ी अच्छी होगी, बस आपको सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वैज्ञानिक दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार। और किसान साथियों, फसल को देखते रहिए और नियमित खेतों का भ्रमण करते रहिए, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि क्या क्या हमारी पौधे में कमी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो बहन अखन हमरे मन के बहुत नगद जानकारी दिलें, गर्मा मूंग फसल कर कातारी देख रेख करल जाला, और इके बतात रहे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और इनकर से बतिया रहे संजीव कुमार लाल।
3: हाँ मोनिका बहन, बहुत नगद जानकारी रहे, असरा करीला कि हमरे के किसान भाई बहन मने कर फायदा जरूर उठावे। अब देखू ने मूंग जो दाल हो चाहे मूंग गोटा हो, मूंग बहुत फायदेमंद है,
2: फायदेमंद है दी। और देखी रहा छोट छोट छोटा मन तो मूंग दाल के बहुत पसंद करती रहे।
3: हाँ हाँ, एक खिचड़ी भी बना बहुत पौष्टिक मानल जाए। और मूंग के तो अभी चना मूंग मिला के खाले भी गर्मी में बहुत फायदा हुए है ना।
2: हाँ,
3: और मूंग के अगर अंकुरित कर दे
2: तो और बगरा फायदा हुआ था।
3: बहुत बहुत फायदे की चीज है के मूंग। और कहल जाए है कि कोई बीमार भी पड़ जाए ला तो अगर उके मूंग के दाल के पिया देवल जाए ला तो एगो ताकत उकर में शरीर में आ जाए ला है
2: ना। दाल कर संगे संगे औषधि कर भी
3: औषधि के भी काम करेला, और उकर में गर्मा मूंग कर बाते बहुत निराला है ना। गर्म समय में, गर्मी के मौसम में जब मूंग के हमरे मने उपजा सकीले उके हमरे मने जरूर इकर फसल के उपजाए चाहिए है ना। और एक हमरे मने जानकारी कर ली कि कैसे मूंग कर दाल के उपजाए समय खरपतवार हो जाए और हमरे मने इकर से कैसे निजात पा सकीला। तो असरा करीला कि हमरे के भाई बहन मने, किसान भाई बहन मने जरूर ई बात के अपन मन में गढ़वाए और इकर फायदा उठावे है ना।
2: सही बात है बहन।
3: हाँ
2: चलो, जानकारी कर संगे संगे हमरे मने को कृषि विकास

0: तो वही ने अखन हमरे मन कुरमाली में लोकगीत सुनत रही सुकुमार और संगी मन गावल गीत,
1: हाँ,
0: और इकरे संगे हमरे कर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम सिरालक और हमरे और करेला हमारी दुनिया कार्यक्रम कर है नी।
1: हाँ बहन,
0: और हमारी दुनिया कार्यक्रम में हमरे कर सुनवाइया भाई बहन मन के फिर से जोहार है बहन।
1: हाँ एक बार फिर से हमारी दुनिया कार्यक्रम में स्वागत है ने सब सुनवाइया भाई बहन मन के। और जो गीत एखन रावरे सुनवा ली ने मोनिका बहन, बड़ा नगद गीत रहे, देखो
0: हाँ
1: देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत गीत रहे,
0: सही
1: सिद्धू
0: बात है,
1: कान्हू और बिरसा के धरती कर वर्णन
0: पूरे
1: रहे है ने।
0: झारखंड कर वर्णन
1: हाँ पूरा
0: है नी।
1: झारखंड के वर्णन रहे,
0: तो
1: तो
0: इसकर माध्यम से भी हमरे के बढ़िया संदेश भेटा लग दी। और देखो दीदी अभी तो गांव घर में अभी छोट छोट छुआ मकर छुट्टी कर देना है, क्या कि स्कूल में तो रही बंद हो जा
1: गर्मी
0: है नी
1: छुट्टी में छुआ
0: बहुत
1: मने।
0: खास गर्मी कर चलते।
1: अब देखो ने मोनिका बहन, गर्मी के छुट्टी हो गई है लेकिन ऐसा है कि दिन भर छुआ मने खेलत है तो खेलते हैं है ने,
0: सही बात
1: अगर
0: है
1: कुछ
0: जी।
1: करत है तो दिन भर करत है। लेकिन इस समय के हमरे के तनिकुन उमन के भी छुआ मन के भी मन में ये डाले के
0: पता
1: चाहिए,
0: चाहिए
1: बताए के चाहिए कि समय के ज्यादा बर्बाद न खे करे है
0: सही
1: ने।
0: बात है जी। कल की देखो
1: चाहे छोट छुआ हो चाहे बड़ हो, समय तो 24 घंटा सबके मिलेला है ने।
0: हाँ हाँ
1: और इस समय के अगर हमरे मने नहीं बढ़िया से उपयोग कर सकीला तो शायद जिंदगी में
0: आगे नहीं बढ़
1: कभी
0: सकी है
1: आगे
0: ना।
1: नहीं बढ़ सकीला। हाँ
0: और कखनो कखनो ऐसा हो जाला थी कि जैसे हम लोग छोट भाई बहन मन के अगर घर का मिल जाए है स्कूल बस से है नी, तो खेले कर चक्कर में भुला जाती गृह कार्य के पूरा नहीं करती
1: हाँ
0: है
1: हाँ और
0: नी।
1: देखो एक दो दिन बाचल रहे ला छुट्टी में तो रफ्तार पकड़े ला एकदम हड़बड़ हड़बड़ करे ला, तो काले नहीं एगो समय के टाइम टेबल समय सारणी बनाए लेवल जाए कि इतना देर हमरे के खेले के, इतना देरी बागवानी करे के, इतना देरी पढ़े के, इतना देरी मनोरंजन करे के,
0: सही
1: सब
0: बात दीदी।
1: है
0: रोने
1: ना।
0: समय तालिका कर बात कर ली तो बहुत बात बढ़िया बात कर ली। कल की कोनो काम के अगर हमरे मन कर थी और हमरे अगर समय तालिका बनाए तो उकरे अनुरूप हमरे अगर कोनो काम के करी ला तो मन भी बढ़िया रहेला, काम भी समय से हो जाला और सब कर ले समयो भेटा जाला है नी।
1: हाँ तो समय के हमरे के कभी भी बेकार में नहीं गंवाए चाहिए है ना, कहे कि जो समय बीत गेल है वो तो लौट के कभी नहीं आवी है ना।
0: सही बात है बहन। और देखो पैसा कर माध्यम से तो हमरे सब चीजें अपन सुखी संपदा वाला चीज की कीन सकी है नी,
1: हाँ,
0: लेकिन समय एक
1: कि
0: ऐसा
1: हमरे
0: चीज है
1: मने नहीं
0: कि
1: कीन सकीला।
0: कितनों खर्चा
1: हाँ
0: लगा थे लेकिन समय के हमरे मन कीन नहीं सका
1: नहीं
0: थी।
1: कीन
0: तो
1: सकीला।
0: सही
1: और
0: हमरे मन के सब मन के समय कर महत्व के समझे खे, और छोट छोट भाई बहन मन के भी समय कितना मूल्यवान है सकर बारे में बता खे दी। कल की अगर हमरे बड़ मन अनुसरण कर थी तो हमरे का छोट भाई बहन मन भी अनुसरण कर बती है नी।
1: एकदम एकदम, तो समय के हमरे के हरगिज न खे बर्बाद करे, एक एक मिनट हमरे लिए उपयोगी है ने। और हर मिनट के हमरे के उपयोग सदुपयोग करे के।
0: हाँ। और कखनो कखनो ऐसा हो जाता दिन कि जैसे कोई बड़ काम है और करे के लिए हमके बहुत कचकच बुझाते तो के हम के कोशिश करे थे कि खंड खंड बैठ के समय से रोके खत्म करे थे ताकि हमारे ध्यान उस काम में केंद्रित रही और हम बढ़िया से कर सके
1: हाँ
0: रहे
1: हाँ
0: नी।
1: हाँ ये बात तो ठीक कहली, बहुत सुपट कहली कि अगर कोई काम के हमरे मने बांट देवीले समय के अनुसार तो काम हमरे के बोझ नहीं बुझायला है ने, और हमरे समय से काम भी पूरा कर लेवीला।
0: सही बात है
1: तो
0: बहन। और सब कोई के हमरे मुके जागे खे और समय कर महत्व के भी जाने खे बहन है नी।
1: आवे वाला जो जेनरेशन है जे पीढ़ी है उके भी बताए थे कि समय हमरे लिए कितना फायदेमंद है ने। और समय के हमरे के एक एक मिनट के सदुपयोग करे के, एक एकदम गवाए के नखे।
0: सही बात है बहन। तो चलो तब समय कर सदुपयोग करब। और चलो एगो नागपुरी लोकगीत सुनीला रूना देवी और संगी माना गावल गीत है नी।
1: चलो चलो
2: ये धारा

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: तो बहिन हमरे मन अभी नागपुरी लोकगीत सुनत रही, रुना देवी और संगी मन गावल गीत रहे, देखा थी रौरे तो पूरा झूमे लग जा ही।
5: हाँ, हाँ, और गीत में संदेश भी बहुत बढ़िया रहे हैं कि हमरे के धरती के बचाए के है ने?
4: सही बात है,
5: तो धरती है तो हमरे के अस्तित्व है मोनिका बहिन, नहीं तो हमरे के तो धरती के बिना कोई अस्तित्व न।

0: की बात है कि और देखियो हमरे कर संगे संगे हम ये कर जे धरती में
1: ना।
0: जे जीव जीव जंतु है चारे गुनगुन है सब पर अस्तित्व हमरे ही तो ओम कर भी अस्तित्व है
1: हाँ
0: नहीं।
1: हाँ हाँ
0: और देखो ओमन है तो हमरे कर प्राकृतिक कर कितना श्रृंगार है कितना
1: हाँ
0: सुंदर लगेला बिहान के भी
1: बिल्कुल।
0: उठाते तो चारे गुन गुन चाहे उठाता थे तो मन गदगद हो जाएगा खुशी से
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: नहीं।
1: लेकिन अब देखू नहीं, कुछ साल पहले जो बात रहे मोनिका बहिन उन्हें भेटायला, शाम के जो चरई चुनगुन के हमरे बने आवाज सुनत रही वो कम होते जाते हैं ना।
0: सही बात है
1: तो
0: देखो
1: जहां तक है कि कर में जलवायु परिवर्तन के भी बहुत बड़ा हाथ
0: जलवायु
1: है।
0: परिवर्तन फिर गांव घर में देखे के लिए भेटाला दे कि बहुत मन तो के मारिक में भी लगती है
1: हाँ
0: नहीं।
1: हाँ हाँ
0: बिना निर्दोष वालों के कम दोस्त दे देते थे मर देते थे तो ऐसा हमरे के कारिक न कहे दी कल के
1: हाँ
0: चारे गुनगुन हमरे कर प्राकृतिक कर शोभा है के तो हमरे के सबको जागे करके खो
1: अब
0: दुख
1: आज
0: कर
1: देखू
0: के
1: नहीं हम जा
0: हाथ
1: रही
0: पे
1: तनी
0: फूंक
1: गांव
0: करके।
1: बटे ने, तो गेरौचा जाने ल नहीं, गेरौचा भेटा लग कितना साल बाद देख ली
0: सही
1: है ना।
0: बात है
1: और
0: दी
1: देख के मन तो खुश हो गए लगे
0: कि
1: एकदम
0: बहुत
1: झुंड
0: दिन
1: में।
0: बाद बरसात भी भेटा
1: हाँ
0: तो नहीं।
1: गेरौचा गोरैया है ना, ये भेटा लग तो मन देख के बहुत बढ़िया लाग लग कि भाई एखनो गेरौचा है हमरे के आसपास, हमरे के नहीं देखे शहर में मिले है ना।
0: शहर में नहीं भेटा रहे लेकिन गांव घर में देखे के लिए भेटा ला दी
1: हाँ हाँ
0: तो देखो प्राकृतिक अगर हमरे रखब तो हमरे कर देश यानी कि सोबटे हरा भरा हुई और हमरे
1: पर्यावरण
0: कर
1: की ही हमरे के बचाए के रखे के है ना, ताकि जलवायु की जो परिवर्तन हुआ थे वो कम से कम हो भी और इकर प्रभाव हमरे के कम से कम भुगते
0: सही
1: पड़ी।
0: बात है दी। तो चलो हमरे मन खोरठा में जानकारी करवाई ले जलवायु परिवर्तन और इके बताते हैं अजय कुमार दास।
2: गोटे दुनिया में जलवायु परिवर्तन के विषय जग जाहिर है, यह बात से इनकार नहीं करल जा सके है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के सामने मौजूद सबले बड़ चुनौती है और एकर से निपटे खातिर वर्तमान समय के बड़ बेसी जरूरत बनल है। आंकड़ा देखल जाए तो 19वीं सदी के आखिर से लेके अखन तक धरती के औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गेल है। एकर अलावे पिछला सदी से अखन तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच के बढ़ोतरी दर्ज करल गेल है। आंकड़ा से स्पष्ट हुए है कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीर रूप से विचार करे के विषय है। के जलवायु परिवर्तन में एक जगह विशेष से भी महसूस करल जा सके है और गोटे दुनिया में भी यदि वर्तमान संबंध में बात करल जा सके है तो एकर प्रभाव गोटे दुनिया में लगभग देखे मिल रहल है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव के वर्तमान में भी महसूस करल जा सके है। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होवे से बर्फ पिघल रहे और महासागर के जल स्तर भी बढ़ल जा रहल है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी भय रहल है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एकरा सबले बेसी ग्रीन हाउस गैस मानल है और यह प्रकृति व मानुष दुयो कारण से उत्सर्जित हेवे है। वैज्ञानिक के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के सबले बेसी उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधन के जलावे से हेवे है। आंकड़ा बताओ हत कि औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 30% की बढ़ोतरी देखे के मिले है। मिथेन गैस जैव पदार्थ के अपघटन मिथेन के एगो बड़ स्रोत है। मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड से बेसी प्रभाव ग्रीन हाउस गैस है, मकिन वातावरण में एकरा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में कम है। फ्लोरोकार्बन एकर पर जो मुख्य रूप से फ्रिज और एसी आदि में करल जा है और ओजोन परत पर एकरा ढेर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जमीन के उपयोग में परिवर्तन वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु जंगल झाड़ के कटा छटल जाना भी एगो जलवायु परिवर्तन के एगो बड़ा कारक है। गाछ वृक्ष केवल हमनी फल और छाहुर ही ना देवत है बल्कि यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस के भी अवशोषित करो है। गाड़ी घोड़ा आदि संख्या में हो गए है। अपन जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैस के उत्सर्जन में ढेर ज्यादा योगदान दिया है। उच्च तापमान पावर प्लांट ऑटोमोबाइल गाछ वृक्ष के कटाई अगर ऐन स्रोत से होवे है वाला ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पृथ्वी के अपेक्षाकृत ढेर तेजी से गर्म रहल है। पिछले 150 बरस से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहल है और वर्ष 2016 के सबले बेसी गर्म साल के रूप में रिकॉर्ड करल गेल है। गर्मी से संबंध रखे वाला मौत और बीमारी बढ़ल समुद्र के

0: स्तर, तूफान के तेज रफ्तार, बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के कईगो खतरनाक परिणाम में बढ़ोतरी के खातिर बढ़ल तापमान के भी एगो कारण मानल जा सके है। एक शोध में पावल गेल है कि यदि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के विषय के गंभीर रूप से नाय लियल गेल है और एकरा कम करे के प्रयास नाय करल जेते तो सदी के अंत तक पृथ्वी के सतह के औसत तापमान 3 डिग्री से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सके है। पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा, बारिश आदि के अनियमितता ढेर बढ़ गेल है। इस सब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। कुछ स्थान पर ढेर ज्यादा बारिश में हो रहा है, जबकि कुछ एक स्थान पर पानी की कमी से सूखे के संभावना बन गई है। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल जाए है और समुद्र के जल स्तर भी ऊपर उठे है, जेकर प्रभाव से समुद्र के आसपास के द्वीप के डूबे के खतरा भी बढ़ जाए है। मालदीव जैसा छोट मोट द्वीप देश में लोग पहल से ही दूसर जगह के खोजे में है। जंगली जीव जंतु के नुकसान, तापमान में वृद्धि और वनस्पति के पैटर्न में बदलाव ने पशु पंखी प्रजाति के विलुप्त होवे खातिर मजबूर कर दिया गेल है। विशेषज्ञ के अनुसार मानल जाए तो धरती के 1/4 प्रजाति साल 2050 तक विलुप्त हो सके है। साल 2008 में ध्रुवीय भालू के उन जानवरों के सूची में जोड़ल गेल हलत जे समुद्र के स्तर में वृद्धि के वजह से विलुप्त हो सके हलत। जानकार लोग अनुमान लगेला कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मलेरिया और डेंगू जैसन बीमारी आरो अधिक बढ़ता है, जकर वजह से नियंत्रण करल ढेरों मुश्किल भय जेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक से अभी तक हीट वेव्स के वजह से लगभग 150,000 से अधिक लोग के मौत भय गेल है। बीतियन के जरिए जलवायु परिवर्तन संकट का प्रबंधन करे आज ढेर ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भय गेल है, जितना कि आरो अनेक उपाय है। वर्तमान मानवाधिकार संरक्षण उन्मुखी विश्व में जलवायु बीतियन यह संदर्भों में एक वेद मांग के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा और जहाँ तक भय सके है वहाँ अच्छे ऊर्जा कर प्रयोग करे के चाहिए, पेड़ पौधा लगावे के चाहिए।
1: तो बहन एखन हमरे मने नगद जानकारी करवाली खोरठा में जलवायु परिवर्तन और एक बतात रहे अजय कुमार दास। तो
2: बहुत नगद जानकारी रहे मोनिका बहन, और जो सुनवाइया भाई बहन मन है एकर से फायदा भी उठाए हो बहन।
1: और देखो दी हमरे के बहुत बढ़िया जानकारी दिले कि हमरे कर बीच जलवायु परिवर्तन हुआ थे तो में हमरे कर ही दोष है नहीं।
2: हाँ, हमरे के कर ले प्रयास करे है कि हमरे के जहाँ तक हो सके पर्यावरण के बचाए के रखे।
1: हाँ, हाँ, और कोशिश करे है जी बगरा से बगरा गाछ वृक्ष
2: तो
1: बहुत नगद हुई है,
2: एकदम सुपर बात कर ली।
1: और एक संगे संगे हमरे के रक्षा भी करते हैं।
2: देखो हमरे मैंने शुरू में ही बात कर ले रही कि गज के लगाओ लेकिन गज के बचाओ भी, खाली लगा देवल से नहीं हो ला नहीं। मोनिका बहन अगर देखो कैगो छगरी गाय मने खाए जाए लगा
1: तो मरी जाए है ना।
2: हाँ, तो उकर कोई मतलब न खे, तो गज के जब लगाओ तो उके बड़ हो तक उकर सुरक्षा भी करो,
1: सुरक्षा भी करे खे और सेवा भी करे खे।
2: हाँ,
1: तभी होवे कि हमरे गुच्छो की अगर सींचा थी तो बढ़िया से करे खे और उकर फायदा हमरे के भेटाई। हाँ, और आवे कोला पीढ़ी में भी भेटाई है ना।
2: हाँ,
1: और देखो अगर हमरे के सबको जागे के और कोशिश करे के बगरा से बगरा गांच वृक्ष के लगा कर
2: तबे
1: और काटे कर प्रयोग कम ही करे के है नहीं।
2: और जहाँ तक हो सके पानी के भी बचा के रखे। हाँ, है ना, पानी, हवा, धूप, यही सब मूलभूत चीज है के जिके हमरे के बढ़िया से संभाल के रखे के है ना। पानी के बिना तो जाना थी कि सब कुछ सुना है ना। और जलवायु
1: परिवर्तन
2: तो पानी के भी हमरे के ठीक से प्रयोग करे के, अच्छा से बचाए के रखे के, और हमरे के अच्छा शुद्ध हवा मिल सके, अच्छा जीवन जिंदगी हमरे मने जी सकी से ले गछ वृक्ष भी लगाए के ये भी बचाए के। तो जलवायु कै गो चीज से निर्माण हुए ला है नहीं।
1: सही बात है,
2: और सब मिला के हमरे के ये देखल जाए तो पर्यावरण के सुरक्षित रखे के
1: और हमरे कर कर्तव्य है कि है नहीं सुरक्षित,
2: ताकि आवे वाला जो बाल बच्चा मने हैं पीढ़ी हैं वो मने हम भी अच्छा से जिंदगी जी सके है ना।
1: सही बात है बहन। तो चलो बातचीत तो करते रहो लेकिन चलो समय बचल है तो हमरे मने को खोरठा लोकगीत ही सुन ले।
2: अच्छा,
1: शिव नंदन पांडे और संगे मने गावल गीत।
2: चलो

0: तो हमरे मने एखन खोरठा में लोकगीत सुनत रही, शिवनंदन पांडे और संगी मन के गावल बहुत नगद गीत रहे मोनिका बहिन। और देखो ने
1: और बढ़िया संदेश भी भेटालक बहिन।
0: हाँ हाँ, और इकरे साथे घड़ी इशारा करत है कि अब हमरे के विदा लेवे के टाइम भी हो गेलक है। तो ये पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल के, और कल हमरे मने फिर से भेटा।
1: हाँ हाँ, नवा नवा जानकारी के संगे। हाँ, फिर से आवाज दी। चलो तुम
0: तब तक ले जोहार
1: जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na,
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो

0: अध्यक्ष नितिन नबीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत, कहा भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन, हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना, मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
1: हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता कहें लेकिन गठबंधन के भी नेता हमें, तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबके बैठक बुलाए हैं, शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे, क्लियर है दोनों सीटें हम जीतेंगे।
0: इधर भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि राज्यसभा की दूसरी सीट उनकी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
2: मंत्री संपर्क में, आप विधायक के बात बोलते हैं, दो तीन को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में। तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत कि भाई बच जाओ, नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहोगे। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि झारखंड के चारों तरफ कमल खिल गया है, झारखंड में कमल खिलाना बाकी।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। पत्रकारों से बातचीत में आज श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेगी भी।
3: रांची मेरी ये दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।
0: इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रवास में है और निश्चित रूप से संगठन को, कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को काफी प्रेरणा मिल रहा है, काफी उत्साहित है कार्यकर्ता, और आने वाले दिनों में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड के भविष्य के प्रति अपना योगदान और अच्छे ढंग से हो सकेगा।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत महागामा में कांग्रेस के BLA एवं कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मतदाता सूची के सत्यापन में जुटे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि BLO के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBA और BBA पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। MBA के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा BBA के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज

0: आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इससे गरीबों का जीवन प्रभावित होगा।
2: कब बढ़ जाएगा पेट्रोल गैस का दाम, एलपीजी का दाम, जबकि क्रूड ऑयल नीचे की ओर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं, उसके बावजूद बढ़ोतरी है, तो पूछिए जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गरीबों का खून चूसने पर आमादा है, दो चार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं।
0: इधर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले अभी भी भारत में घरेलू गैस काफी कम कीमत पर मिल रही है।
3: उनको एक एलपीजी घरेलू उपभोक्ता को बेचने में 870 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है, तो एक छोटी सी कोशिश है इस भरपाई को करने की, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगल बगल के देशों में, महाशक्तियों में भी जहां अभी गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, हम ये जो है प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी।
0: खूंटी जिले के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षु अनूप ने सभी मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतते हुए खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से

0: स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
1: आरबीआई कहता है
2: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में दो मुहानी नदी तट के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, वन कर्मियों, स्वयं सेवकों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर क्षेत्र की साफ सफाई में योगदान दिया। इस दौरान DFO सबाल अमंसारी ने लोगों से नदियों को स्वच्छ और पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर हम लोग आज सफाई अभियान का कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग दो मुहाने से लेकर के डोबो पुल तक सफाई अभियान, सुवर्णरेखा नदी के किनारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं और जितने भी कचड़े पड़े हुए हैं सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं।
1: जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता का आकर्षण दो बच्चों की मां सोनल मिश्रा रही, जिन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। सोनल ने कहा कि बच्चों के साथ तैराकी शुरू करते समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें पदक भी मिलेगा।
3: 400 मीटर फ्री स्टाइल में मैं सेकंड पोजीशन लाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे आते थे पुल में, इसीलिए मैंने भी तैरना शुरू कर दिया था। 1 घंटे बैठने से बेटर है कि मैं तैर लूँ। तब कभी सोचा नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाऊंगी।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के युवा मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं।
4: मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के कार्यकाल से मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो अच्छी तरह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल और निशान के संयुक्त तत्वधान में आयोजित सप्ताह व्यापी थिएटर आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कस्टम मास्क, स्टेज क्राफ्ट और अन्य कलात्मक सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
5: निशान संस्था और ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल मिलकर के एक 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था जो नाटक के अंदर में आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उपयोग होता है उसके बारे में। अभिनेता को लोग देखते हैं, लेकिन उस अभिनेता के अभिनय को निखारने के लिए जो पीछे काम होता है बैक स्टेज में, उसके लिए वर्कशॉप था।
1: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण किसानों को उनके आमों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष भी झारखंड के आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हो चुके हैं और अभी वक्त है हमारे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल का। आज आप सुनेंगे कविताएं सदानंद सिंह यादव से, कहानी रीता गुप्ता से, प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड के दो साहित्यकार सदानंद सिंह यादव और रीता गुप्ता को हम सुनेंगे। सदानंद सिंह यादव जहां अपनी कविताओं के माध्यम से लोक संस्कृति और सरोकार को अभिव्यंजित करेंगे, वहीं रीता गुप्ता कहानी के माध्यम से आधुनिक परिवेश में एकाकी होते जा रहे जीवन के फलसफा को सामने रखेंगे। मित्रों, लोक रंग, लोक राग, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, यानी मनुष्य ने आज तक जितनी तरह की कला का सृजन किया है, वे सब लोक के आसपास ही घूमता है। लोक ही उसके केंद्र में है। लोगों के उत्कर्ष और उन्नयन के लिए ही इसकी रचना की जाती है। कवि सदानंद सिंह यादव भी मूलतः लोक कवि हैं, इसलिए इनकी रचनाओं में एक तरफ स्थानीयता का सुवास है तो दूसरी तरफ लोगों को जगाने की आंच भी। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति नेह और चिंता साथ साथ इनकी रचनाओं में उमगती हैं, इसलिए ये कह पाते हैं, ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, क्या अंबर की प्रेम पाती नाम धारा के लाई हो। झारखंड के प्रति जब इनका अनुराग जगता है तो ये कह उठते हैं, ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दे दो विधाता झारखंड में। पानी को लेकर लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं, जरा ध्यान से देखो भैया, पानी नहीं नहानी में, तुमको आज नहाना होगा एक लोटे भर पानी में। तो आइए सुनते हैं सदानंद सिंह यादव की आवाज में ही उनकी कुछ रचनाएं।
1: आषाढ़ की बारिश। ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, क्या अंबर की प्रेम पाती जो नाम धरा के लाई हो, या सृष्टि का है सृजन काल यही ये समझाने आई हो। ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, पुष्पित पल्लवित होंगे ही बीजारोपण होगा जिसका, जीर्ण शीर्ण पत्ते दुखों के क्या दूर बहाकर आई हो। ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, विरह दग्धा धरा के सीने में शीतलता लाई हो, सौंधी सौंधी खुशबू आंचल की चहुं ओर बिखराई हो। ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, मिलन की खुशी में पूरी सृष्टि सुगबुगाई है, मिलन की खुशी में पूरी सृष्टि सुगबुगाई है, आम जामुन लीची कहीं कहीं कोयल कुके अमराई है। ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो, ओ आषाढ़ की रिमझिम बारिश क्या संदेशा लाई हो। एक झारखंड गीत झारखंड राज्य की महिमा पर केंद्रित मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसी माटी ना

प्रकृति और जीवन पर एक रचना आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जीवन में चाहिए अगर खुशहाली, लौटा दो धरती माँ को उसके जल जंगल और हरियाली। जीवन में चाहिए अगर खुशहाली, लौटा दो धरती माँ को उसके जल जंगल और हरियाली। नदियों का आंचल फैलाकर प्यार दुलार चुमकार दिया, उनका ही दोहन कर हमने कैसा उसे किरस्काय किया। नदियाँ ही सूखी होंगी तो जीवन में रंग कहाँ से आएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या वीरानियाँ देकर जाएंगे। कविताओं में रंग कैसे भरेंगे जब प्रकृति ही सूखी हो आली। जीवन में चाहिए अगर खुशहाली, लौटा दो धरती माँ को उसके जल जंगल और हरियाली। काट काट जंगल को अपनी तरक्की का सामान किया, बेघर करके पशु पक्षियों को उपद्रव का आह्वान किया। वो तृप्त धरती बिन बारिश कैसे रुकेगा वर्षा का जल, पर्वत नग्न खड़े हों जैसे बिन जंगल बिन हरियाली। कैसे गाएं स्तुति इनकी दे रहे हों जैसे गाली। जीवन में चाहिए अगर खुशहाली, लौटा दो धरती माँ को उसके जल जंगल और हरियाली। करें इतना ही बहुत नो कर सकें अगर, करें इतना ही बहुत नो कर सकें अगर, लगा लें दो चार वृक्ष ही हम सभी अपने अपने घर। सड़कों के किनारे किनारे वृक्षों की कतारें हो, छोटे छोटे उपवनों बागानों में इठलाती खेलती बहारें हो। हरे भरे पर्वत हों अपने धरती माँ की चुनर हरियाली हो। पाए हम सभी आशीष जीवन का फैली हर ओर खुशहाली हो। जीवन में चाहिए अगर खुशहाली, लौटा दो धरती माँ को उसके जल जंगल और हरियाली। जल संरक्षण पर एक गीत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जल है तो कल है, जल ही जीवन है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, शहर का एकाकी जीवन, जीवन के सूखते नूर रंग, लगातार रंग बदलने से परिवेश में उतरता दंश भला किसी को कैसे अचंभित नहीं करेगा। बड़े बड़े आलिशान मकान में खुदी को खोजते बुजुर्ग अंततः दिल बहलाने के लिए बालकोनी से सड़क की हलचल को जब तारते हैं, तब जिंदगी की सार्थकता कई प्रश्नों में डूब जाती है। क्या क्या जीवन भर, क्या इसी के लिए जिया पूरा जीवन, या फिर आधुनिक समय की बढ़ती लिप्सा मनुष्य को ही अप्रासंगिक बनाती जा रही है दूर दूर तक। क्यों खारिज कर दी जा रही हर वक्त जीवन की दुपहरी से छांव की बंदिश। रीता गुप्ता की कहानी बहुत सूक्ष्म ढंग से इन प्रश्नों को लोगों के सामने रखती है, साथ ही बताती भी है कि थोड़ा सा साहचर्य और मानवीय दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देता है। लेखिका छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से जीवन की उस धुरी पर हाथ रखना चाहती हैं जो मनुष्य को हर परिस्थिति में बिखराव से बचाने के लिए गतिशील हो। तो आइए सुनते हैं कहानीकार रीता गुप्ता की आवाज में ही उनकी एक कहानी, खोई खोई सी बहारें।
2: आंटी अपनी बालकनी में खड़े खड़े कई घंटों से रास्ते पर आते जाते लोगों को देख रही थी। यह उनका प्रिय शगल था वक्त काटने का। लगभग 4 दशकों से वहाँ रह रही थी, सो ज़्यादातर लोगों को पहचानती भी थी। बीच बीच में वहाँ झूले पर बैठ भी जाती। अरे, इसे बहुत दिनों के बाद देखा, बहुत दुबला लग रहा है, शायद बीमार होगा। ये कार बार बार क्यों इधर का चक्कर लगा रही है, जरूर किसी का घर खोज रहा होगा। अब मुझे क्या, मुझसे पूछे तो बता ही दूंगी। आजकल लोग कितना बाहर का खाना खाते हैं, जब देखो स्कूटी पर डिलीवरी बॉय आते जाते दिखते हैं। साथ ही साथ आंटी अपने अगल बगल रहने वालों पर भी पूरी नज़र रखती थी। सामने घर में सुबह से ही बड़ी चहल पहल दिख रही है, जाने कौन लोग आ जा रहे हैं। अब इनसे पूछती मैं सही लगूंगी क्या, कहेगी कि मैं ताक झांक करती हूँ। अब मुझे क्या पड़ा है, जिसे जो करना हो करे। बगल घर से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, मैं क्यों जाऊँ पूछने, मैं तो खुद ही दुखियारी हूँ। आंटी इस तरह आते जाते लोगों को देख अनुमान लगाती। बाहर आना जाना उन्हें पसंद नहीं था, पर अब घर में भी मन नहीं लगता था। अपने घर के अंदर झांकने की भी इच्छा नहीं होती उनकी। पुरानी महरी थी जो सुबह शाम आकर उनका भोजन बना, घर के सारे काम निपटा जाती। बाहर के सारे काम, खरीदारी इत्यादि वही करती। आंटी तो बस जरूरत होने पर ही निकलती। वह आती तो आंटी को भी घर घर सा लगता। क्या पकाया जाए, क्या किया जाए, जैसी रोजमर्रा की बातें होती। फिर महरी की राम कहानी कुछ देर सुनती, जिसे वह बेहद दुखी सुनाती। पर आंटी उसकी कहानी को कुछ पल चुन खुद को महरी से कमतर समझ फिर से उदास हो जाती। अब उसकी बातों में बेचारा बेटा होता, शैतान बहू होती, लालची पोता होता, पीटने वाला पति होता, पर आंटी की दिनचर्या में ये सभी नदारद थे। इन रिश्तों की खट्टी मिट्टी नोक झोंक से उनका जीवन रीता था। अंकल कुछ महीने पहले ही गुजरे थे। बहरहाल आंटी का जीवन एकाकी था, जो शायद उनकी खुद की ही चुनी हुई थी, वरना अड़ोसी पड़ोसी लोकल रिश्तेदार किसी से तो निकटता होती। जाड़ों में दिन अच्छे कटते, दिन में धूप का आनंद लेते, अपने राम झरोखे से दुनिया को निखरती और टीवी तथा दूरस्थ रिश्तेदारों संग मोबाइल पर शाम गुजर जाती। पर अब कांटे नहीं कट रही थी राम झरोखा। अंकल बालकनी को यही कहते और आंटी को चिढ़ाते, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत। इस साल गर्मियों के लंबे दिन काटना मुश्किल हो रहा था। अंकल को किसी भी मौसम में वक्त काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें बागवानी का शौक था और साथ ही साथ पढ़ने का, पढ़ने का ऐसा कि वे किसी भी विषय पर कुछ भी लिखा पढ़ा पढ़ सकते थे। आंटी चिढ़ती रहती, जब देखो किताबों के पीछे मुंह छुपाए रहते हो, अलमारियां भर गई हैं तुम्हारी किताबों से। सुबह सुबह 2 घंटे हिंदी अंग्रेजी अखबार पढ़ चुके हो। मुझे तो लगता है मुझसे बचने के लिए तुम इनका सहारा लेते हो, मेरी बातों को अनसुनी करने का बस बहाना है। अंकल मुस्कुरा कर कहते, तुम भी पढ़ो, इससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं। आंटी ज़्यादा गिटपिट करने लगती तो अंकल सीढ़ियाँ उतर नीचे बगीचे में चले जाते, फिर तो जाने कितना वक्त गुजर जाता वहाँ। आंटी कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखती उधर, और बेकार की उस मिट्टी बालू फूल पत्तों को कोसती जो दिन भर अंकल को व्यस्त रखते। शहर में रहते हुए भी आंटी अंकल के पास जमीन पर खड़ी 2 मंजिला मकान था, बागवानी के लिए अच्छा खासा खाली जमीन भी था। अंकल ने बड़े चाव से बगीचे को सजाया था और दिन का एक लंबा प्रहर उनका वहीं गुजरता। बीच में लॉन और मौसमी फूलों व गुलाब की कई किस्मों की बहार रहती सदा, आम अमरूद लीची सहजन इत्यादि के बड़े फलदार पेड़ किनारों पर 4 दीवारी से लगे खड़े थे। एक समर्पित माली भी था जिससे अंकल बगीचे का काम करवाते थे, वही अभी तक बगीचे की देखभाल कर रहा था। पर अब फूल पत्ते फल वृक्ष और खुद माली अनमने से बगीचे में रहते। इन दिनों सबके चेहरे से मानो नूर ही चला गया हो। अब खिलना है तो फूल फल फर्ज समझ खिले हुए थे, वरना उस गुलशन से रौनकें बाहर गायब थी। आंटी को न पहले इन सब में कोई रुचि थी न अब कोई जागृत हुई थी। अलबत्ता माली बहाल था क्योंकि कम से कम वह सफाई तो कर रहा था जगह की, यानी अंकल जी का जाना वहाँ उपस्थित जड़ चेतन सबको खल रहा था। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। आंटी अपने राम झरोखे से झूले पर अनमनी सी बैठी दूर शर्मा जी के घर कौन आ रहा देखने की कोशिश कर रही थी कि नीचे गेट खोलने की खट सी आवाज आई और फिर सर सराहट सी हल्की आवाज। घुटनों को पकड़ते थोड़ी कराहती हुई आंटी उठी और नीचे की ओर झांका। 12-13 साल के 3 लड़के नीचे बगीचे

0: बगीचे में दिखे। उनके हाथों में ढेर सारे ताजे गुलाब थे और वे कुछ और तोड़ने की ओर उद्यत थे। हट हट शैतान, चल भाग, अरे फूल मत तोड़ो, आंटी ऊपर से ही हाँक लगाने लगी। पर लड़के भी ढीठ थे, कुछ और फूलों को आखिर नोच कर ही भागे। भागते वक्त गेट भी बंद नहीं किया। आंटी हैरान परेशान हो ही रही थी कि तभी खुले गेट से कुछ गाय अंदर घुसने लगी। अब तो झक मार आंटी को नीचे की तरफ भागना ही पड़ा। सीढ़ियों से उतरने फिर चढ़ने में बिचारी थक चुकी थी। वे काउच पर कुछ देर के लिए पसरी ही थी कि फिर थप थप की आवाज़ों ने उन्हें राम झरोखों की ओर उन्मुख किया। कौन है, किधर है? आंटी इधर उधर खोजी निगाहों को फिराने लगी। गेट भी बंद है, अभी सोच ही रही थी कि उनकी निगाह चार दीवारी की तरफ गई। सहजन के पेड़ पर दो तीन महिलाएं चढ़ी दिखीं और दो नीचे खड़ी थीं। अरे क्या हो रहा है उधर, किससे पूछकर पेड़ पर चढ़ी हो? माई जी, मुनगा के पतई खातिर चढ़ा भाई हमने, रंगीन छापेदार साड़ी पहनी एक महिला ने कहा। सबने घुटनों तक अपनी साड़ी को चढ़ाकर आंचल को घुमाकर कमर में कस खोसा था। पर सहजन की पत्तियों का क्या करोगी, आंटी ने पूछा। दार में डाल के पकईबे हमने, भात साथ सान के खाइब माई जी, मुनगा के फूल भी तनी तोड़ ले माई जी। अच्छा थोड़े तोड़ लो, पर पूछना तो चाहिए था तोड़ने से पहले। वो जो साहब हथिन या पहले, वो तो हमनी के खुदे तोड़े देत रहे। अंकल का चित्र आते आंटी की आंखें भर आई और वे झूले पर बैठ गई। आंटी अब उठ खड़ी हुई और पेड़ को ध्यान से देखने लगी। सहजन के पेड़ पर अभी फूल आने शुरू ही हुए थे और उनमें पतली फलियां भी लगने लगी थी। पत्ते तो यूं ही कम थे। आंटी कुछ देर तक खड़ी उनसे बतियाती रही, वे सब अंकल को याद कर रही थी। आंटी बगीचे की ओर नज़र घुमा निरीक्षण सा करने लगी। बगीचा भी उन्हें अपनी ही तरह खाली खाली सा ही लगा। अगले दिन सुबह से ही माली का इंतजार कर रही थी आंटी। आते ही उन्होंने उससे पूछना शुरू किया, बगीचे में इतना खालीपन क्यों है, ऐसा क्या नहीं हुआ है जो पहले होता था? माली का मन भराया, महीनों बाद किसी ने उसके बगीचे का हाल पूछा था। इस बार गर्मियों के फूल कहाँ लगे माई जी, साहब होते तो, कहते उसका गला रुंध गया। मैं देती हूँ पैसा, तुम खुद ही नर्सरी से पौधे ले आओ और जैसा तुम्हारे साहब करवाते थे वैसा ही करो, कहते उनका भी गला भर आया। उस दिन वे देर तक नीचे बगीचे में ही माली से काम करवाती और बतियाती रह गई। पौधे आने के बाद तो कुछ दिनों तक यही रवैया दोहराता रहा। आंटी अब ज़्यादातर नीचे ही रहती, कभी ये देखने कि नए पौधों में कितनी पत्तियाँ आईं, तो कभी गुलाबों की रखवाली करने। जब सीजन की पहली कली खिली तो आंटी को पहली बार माँ बनने जैसी खुशी हुई। धीरे धीरे हर फूल, हर पत्ती, हर फल से उन्हें अपनत्व होने लगा। आते जाते लोग कभी नीम की पत्तियां तो कभी तुलसी, सहजन, गिलोय या एलोवेरा लेने आ जाते। उसकी स्कूली बच्चों से भी अब दोस्ती हो चली थी। फूल तो अब नहीं तोड़ते थे, पर छोटी छोटी अमियां पर खूब ढेले चलने लगे थे। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। आंटी का सारा दिन अब आम अगोड़ने में बीत रहा था। अब राम झरोखा सुना रहने लगा था और गार्डन में फिर से रौनकें बहार थी।
1: इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का आज का यह आयोजन संपन्न होता है। आपको आज का यह आयोजन कैसा लगा, हमें ईमेल के जरिए जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है bolorachi@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, bolorachi@gmail.com। इस कार्यक्रम का संचालन किया प्रणव कुमार ने और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्यिक पत्रिका शद्दल यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति स्वर था प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की थी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आज आप सुनेंगे हिंदी में और इसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे रविवासीय अखिल भारतीय संगीत सभा विशाखापट्टनम के टॉप श्रेणी के कलाकार विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटक गायन।

रात्रि के 11 बजे से समय रहेगा हिंदी समाचार का। और रात्रि 11:05 से आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार, और मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। अगला कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 7:45 हो चुके हैं और अभी समय है 47 समाचार पत्रिका का।

0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧ ᱟᱧᱡᱚᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱟᱞᱟᱦᱟᱠᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱡᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱥᱩᱭᱤᱠ ᱩᱛᱷᱟᱞ ᱯᱩᱛᱷᱟᱞ ᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨ ᱰᱷᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱨ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱟᱞᱜᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱟᱝᱜᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱚᱥᱢᱤᱛᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱚᱞ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱚᱞ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟ ᱟᱨ ᱚᱥᱛᱤᱛᱣᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱢᱨᱚᱥᱛᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱟᱭᱤᱛᱣᱚ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱵᱤᱨᱟᱥᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱜ ᱚᱢᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱚᱨᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱟᱝᱜᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱮᱴᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽᱣᱟᱨ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽᱣᱟᱨ ᱥᱚᱢᱤᱠᱠᱷᱟ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤᱛ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱚᱞᱯᱚᱥᱚᱝᱠᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱯᱤᱪᱷᱲᱟ ᱵᱚᱨᱜᱽ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱫᱟᱬᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱟᱛᱢᱚᱠ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱨᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱨ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱤᱯᱥ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟᱫᱷᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱳᱨ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱨᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱪᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱟᱫᱤᱛᱛᱚ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱥᱟᱦᱩᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱱᱮᱛᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱵᱳᱠᱟᱨᱳ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱨᱚᱫᱷᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱳᱠᱟᱨᱳ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱟᱢᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤᱫ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱪᱷᱚᱛᱨᱩᱫᱷᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱟ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ 12 ᱥᱮᱨᱢᱟᱣᱟᱜ ᱩᱯᱞᱚᱵᱽᱫᱷᱤ ᱟᱨ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱪᱩᱱᱟᱹᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱢᱩᱢᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱝᱜᱨᱮᱥ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱯᱪᱟᱨᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱯᱨᱚᱛᱭᱟᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱞᱟᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱷᱳᱥᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱱᱟᱛᱷᱣᱟᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱴᱨᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱥᱚᱢᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱝᱜᱨᱮᱥ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱪᱩᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱛᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱚᱱᱱᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ 18 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱚᱛᱫᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ SIR ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱛᱫᱟᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱯᱤᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱩᱛᱷ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱮᱢᱯ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ BLO ᱫᱚ ᱟᱱᱢᱮᱨᱮᱰ ᱢᱚᱛᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱛᱫᱟᱛᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱯᱤᱝ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱱᱤᱨᱵᱟᱪᱚᱱ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ 15 ᱡᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱯᱮ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱤᱨᱵᱟᱪᱚᱱ ᱟᱭᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱟᱶᱛᱮ 6 ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ 3 ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ SIR ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ 7 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱚᱛᱫᱟᱛᱟ ᱥᱩᱪᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱜᱟᱨᱤᱢᱟ ᱩᱛᱥᱚᱵᱽ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ 3 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱨᱮ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱟ ᱟᱵᱟᱫᱤ ᱠᱮᱴᱮ ᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱡᱳᱨ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 5 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱯᱨᱮᱥ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱮᱴᱮ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱩᱯᱞᱚᱵᱽᱫᱷᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱫᱷᱟ ᱟᱵᱟᱫᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ 12 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱮᱴ ᱫᱚ 5 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭᱟᱜ ᱩᱯᱠᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱜ CSR ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱤᱞᱟᱭ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱥᱤᱞᱟᱭ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱟᱭ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱛᱢ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱤᱛ ᱨᱤᱢᱥ 2 ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮ ᱠᱟᱲᱟ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱢᱚᱧᱪ ᱨᱮ ᱜᱟᱨᱢᱟᱣ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱯᱡᱟᱣ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱨᱤᱢᱥ 2 ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱷᱳᱥᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱥᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱟᱥᱟ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ 3 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱦᱟᱯᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ SP ᱥᱤᱝ ᱵᱟᱜᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱩᱨ ᱨᱮ 42 ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱯᱟᱨᱟᱣ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱦᱤᱛᱟᱭᱥᱤ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱥᱨᱮᱱᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱠᱩᱲ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱨᱦᱟᱹᱴᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱚᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱞ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱞ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱣᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ MOU ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ MOU ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱣᱟᱞ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ CR ᱯᱟᱴᱤᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱱᱚᱞᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ MOU ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱩᱯᱛᱮ 2,500 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱢᱚᱦᱟᱱᱤᱨᱫᱮᱥᱚᱠ ᱛᱟᱫᱟᱥᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱫᱚ 5 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱞᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱵᱤᱫᱷᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱚᱢᱤᱠᱠᱷᱟ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱢᱩ ᱯᱨᱚᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱚᱯᱨᱟᱫᱷ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ DGP ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱯᱥᱤ ᱥᱚᱢᱚᱱᱵᱚᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱯᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱᱛᱨ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱵᱮᱫᱚᱱᱥᱤᱞ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ DGP ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱚᱛ ᱵᱤᱵᱟᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱟᱨᱵᱟᱭᱤ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱷᱤᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱰᱮᱡ ᱚᱱ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱮᱴ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱷᱟᱜᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱥᱠᱩᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱥᱚᱥᱛᱷ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱟᱭᱞᱤ ᱟᱝᱜᱚᱪᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱮᱴ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞᱤᱝ ᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱠᱷᱟᱝᱠᱤᱛ ᱠᱮᱫᱟᱭ भारत दो जापान रे हुएन अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी हपारा जितौ केदा। मिटेन मुकाबला रे भारतीय टीम दो मेजबान जापान 4-3 खोन हराव कते स्वर्ण पदक रे कब्जा केदा। नोआ जीतकर रेन हीरो झारखंड रेन आशीष तानी पूर्ति करना। नोते भारतीय बिटी तको हो फुटबॉल मैदान रे परचम को उटांग केदा। भारत दो गोवा रे हुएन सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हपाराव को जितौना। फाइनल रे टीम इंडिया दो बांग्लादेश 3-1 खोन हराव के दया। जिनिस बचाव और पर्यावरण बचाव लगी क्रिया को हथाव केदा। पनत गोम के संतोष कुमार गंगवार दो लोक भवन राचा रे दारे लगाव केदा। निये ओक्ते उनी दो पर्यावरण बचाव रे जोर एम इनाय आर आयमा दारे लगाव पे। पनत गोम के दो मेन केदा पर्यावरण बचाव होड़ आंदोलन बनाव जरूरा। दारे पृथ्वी संतुलन स्वच्छ वायु और हिजू पीढ़ी बचाव हिजू समय लगी अड्डी जरूरा। भाजपा ने राष्ट्रीय सूत्रे दो रांची रेना कुचू रे पार्टी नेता को साव सांगठनिक विषय रे भाजपा रेन राष्ट्रीय सूत्रे दो रांची रेना कुचू रे पार्टी नेता को साव सांगठनिक विषय रे विचार के दे। झारखंड सपड़ा किरिये राज्यसभा चुनाव लगी गपा जितुम पेरे रिया आखिरी दिन मारांग होड़ एंट्री ते अड़ी मो चुनाव संख्या बोल जुटाव रे कमी। रांची रे प्रस्तावित रिम्स टू बिना विरोध रे चंपाई सोरेन मारांग आंदोलन मेन के दे। चासा होड़ को बांग नेल रेना दोसा। आर रांची साउते दिसोम रेना आयमा हिस्से रे फिट इंडिया लेकाते संडेज ऑन साइकिल अभियान रक्षा राज्य मंत्री रांची रे सेले।
1: इसी के साथ संताली समाचार पत्रिका यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी कराची केंद्र है और हम हाजिर हैं हमारी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: This is Akashvani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक

0: का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की, उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है, उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं

0: बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है।
1: जी
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके
1: जी
0: इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो।
1: मौजूद हो।
0: इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की। ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण। ये आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: आसान
1: नहीं।
0: लक्ष्य नहीं है।
1: जी
0: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल
1: डिजिटल।
0: सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस है, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। एनसीडीज का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं, उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों अब से कुछ ही देर में क्रमशः आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ

0: सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331481। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono

0: Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single cycle clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing fourth Grand Slam final of his career, while 10th seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government is launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and an entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियांग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी के हिमालय शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फ़रोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हमनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और आवाम से आवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी تعلق اور تال میل قائم رکھ

0: ने के अपने अजम की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रूनमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के कयाम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एजाज़ मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ़ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त लेबनान में अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एजाज़ से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मौके इख्तराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नज़रिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत जिसकी कदर फिलवक्त तकरीबन 9 अरब अमरीकी डॉलर है तवक्को है कि अगले 7 से 8 बरस में बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर हो जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि रियासती हुकूमत बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए सभी ज़रूरी इकदामात कर रही है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि इस साल मामूल के मुताबिक 92% बारिश की पेशगोई के बावजूद मराठवाड़ा के कुछ अजला मगरबी विदर्भ शुमाली महाराष्ट्र और दीगर मकामात में एल नीनो के असरात की वजह से खुश्क साली से मुतासर इलाकों में बारिश कम होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों को मौसम की के बदलती हुई सूरत हाल से निमटने में मदद के लिए वक्तन फवक्तन एडवाइजरी जारी कर रही है। कौमी अवार्ड से सरफराज मलयालम फिल्मों के अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 बरस के थे। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में अदाकारी की। अपने मुनफरिद अंदाज में मजाहिया किरदारों को निभाते हुए सलीम कुमार ने मिजाह को एक इम्तियाजी जहत अता की। उन्हें 2010 में बेहतरीन अदाकार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और स्टेट फिल्म अवार्ड मिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस अदाकार ने अपने उम्दा करियर में मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग किस्म के किरदार निभाकर अपनी गुनागों और यादगार अदाकारी की तारीख रकम की है। मगरबी बंगाल की खवातीन और बच्चों की नशोनुमा और समाजी बहबूद की वजीर अग्निमित्रा पॉल ने सिलीगुड़ी में आज आला सतह की इंतजामिया जायजा कमेटी की मीटिंग की सदारत की। अपना ओहदा संभालने के बाद मोहतरमा पॉल का यह शुमाली बंगाल के खित्ते का पहला सरकारी दौरा है। तबादले ख्याल में बल्दियाती उमूर खवातीन और बच्चों की नशोनुमा समाजी बहबूद कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त सफाई सुथराई नालियों की सफाई कूड़े का बंदोबस्त ट्रैफिक से मुतअल्लिक जवाबित और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी जेर बहस आए। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा पॉल ने कहा कि जल्द ही दार्जिलिंग मिरिक करसियांग कालीपोंग और सिलीगुड़ी को 5 हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت

0: और इलाकाई मईशत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मोहतरमा पॉल ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे और सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगले माह की पहली तारीख से सिर्फ नामजद मकामात पर ही पार्किंग की इजाजत होगी और गैर कानूनी पार्किंग की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY पर अमलावरी करने वाली 36वीं रियासत बनने के लिए तैयार है। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम है। सेहत से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार रियासत में ABPMJAY पर अमलावरी के सिलसिले में कल एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इस मुफाहमतनामे पर नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मसावी और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत की हसूलियाबी की जानिब सफर में यह मुफाहमतनामा एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरखास्त देने का आज आखिरी दिन है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोर्टल आज आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तालिब इल्मों से कहा है कि वह वक्त खत्म होने से पहले पहले अपनी दरखास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। अमरीका की ओहायो रियासत के टोलेडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाकये में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब हुई। ये 2 रोज तक जारी रहने वाला सालाना फेस्टिवल है जो मौसीकी के प्रोग्रामों और तारीखी मकामात की सैर के लिए जाना जाता है। टोलेडो के डिप्टी पुलिस चीफ जो हेफरमैन ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि 2 अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने इस वाकये पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि हुक्काम सूरतेहाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरिकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून शुमाली मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों पूरे नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक अंदरूनी कर्नाटक केरलम माहे जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकामात पर तेज और इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हब्स से कुछ राहत मिली। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आज रत्नागिरी जिले तक पहुंच गई है। जिले के राजापुर तालुका में आज सपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारत की खवातीन फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। भारत ने गोवा के मडगांव में कल हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दी और छठी मरतबा ये खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी, जोश जज्बा और टीम वर्क का मुजाहरा किया। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि यह कामयाबी फुटबॉल में खवातीन की बढ़ती हुई कुव्वत की मजहर है और यह पूरे मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मंगोलिया के उलान बातर ओपन में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपनी मुतासिर कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। 61 किलोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के एसआईएल को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। دنیش نے 125 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو صفر کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. موہت کمار نے 65 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا. 57 کلوگرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو صفر کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا. نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے. وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں. بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے. بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا. کپتان شبھمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے. رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے. افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے. وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں. اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے. جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے. اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: روپکوں کے اکھل بھارتیہ کارکرم میں پرستت ہے آکاشوانی کے 90 ورش کے اپلکش میں اپریل ماہ سے پرارمبھ 3 کڑیوں کی شرنکھلا میں تیسرا اور انتم روپک آکاشوانی, جہاں خبر ملی اور کھیل کھلا. آلیک آنند شریواستو کا ہے, پرستت کرتا ہے نوودتا مشرا. آئیے سنتے ہیں روپک آکاشوانی, جہاں خبر ملی اور کھیل کھلا.

0: ये उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह के पहले चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुमित टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
5: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
7: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 2400 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
8: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
9: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
8: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
10: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
11: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
12: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आयल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देके उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पे बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए, पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया
1: 60 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के कुआलालंपुर में जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती साजीद पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म भारत 2-1 से जीत गया भारत विश्व हॉकी चैंपियन है ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूँ कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा दो काम किए एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया गृहिणियों तक पहुंचाया खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है उससे बड़ा दुख भी होता है लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था रेडियो ही एकमात्र माध्यम था मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही लेकिन उनका कर्तव्य भी था उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया
2: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया
1: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग
5: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवर्स ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
2: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
6: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने एक कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
2: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
7: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है, मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरे अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जराजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जराजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकाय

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है खर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राजमार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkataramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, वेर इन वी प्रेजेंटेड अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही वॉज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड ऑन द घटम बाय विद्वान श्री M हरिबाबू। Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब

स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।